1987 में रिलीज हुई मूवी सिंदूर का ये वाला गाना था। और अभी श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं और फिर इस 11 अक्टूबर रविवार से शरद नवरात्रि शुरू हो जाएंगी, यानी देश में तो उत्सव होगा ही लेकिन हमारा दिल्ली शहर जो है भाई वो चमक उठेगा। और रात में रंगीन लाइट्स की खूबसूरती वो तो अलग ही लेवल की होती है। और मंदिरों में भीड़, पकवान, सजावट, फल फूलों की खुशबू, मिठाइयों का स्वाद और खूब गरबा और डांडिया नाइट्स, और हाँ वो भजनों के पंडाल, मतलब बड़ा मजा आने वाला है। मुझे नहीं पता कि आपने अभी क्या प्लानिंग की हुई है। मैंने तो अपनी काफ़ी सारी प्लानिंग जो है वो बनाकर रखी हुई है, कपड़े वगैरह भी तैयार कर लिए। और थोड़ा ये भी होता है ना कि जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं उनको पहले ही कर लेना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे मैं सुबह सुबह कैसी बातें करूं, मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप अब जो दिन शुरू हो रहा है तो उसकी आप प्लानिंग कर सकें कि भाई आगे कैसे कैसे जल्दी जल्दी सारे बड़े बड़े काम खत्म करने, ताकि आप आराम से अपनी फैमिली के साथ जो है इन फेस्टिवल्स का मजा ले सके। अभी के लिए आप गानों का मजा लीजिए। मैं हूं पंकज आपके साथ सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर, और शो का नाम है भोर सुहानी।

अभी स्टूडियो की खिड़की से मैंने देखा चांद, इतना छोटा सा मतलब दिख रहा है, आधा सा, बहुत आधा सा दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी कहने को तो सुबह हो गई है, लेकिन माहौल अभी जो है बिल्कुल एनवायरमेंट बिल्कुल रात जैसा लग रहा है। खैर, सर्दियां आएंगी तो सुबह की रोशनी थोड़ी सी देर के बाद जो है वो निकलेगी, और दिन तो हल्के हल्के छोटे हो ही गए हैं, तो अपने दिन के कामों की प्लानिंग जो है उसी के हिसाब से करें, ताकि भाई जल्दी घर पहुंचें और फैमिली के साथ आप समय बिताएं। आई होप आपको मेरे साथ समय बिताना भी अच्छा लगा होगा। और अब अगले घंटे आप सुनेंगे अर्पण शो सुरति जिंदल के साथ। और एक बात और आपसे मेरा कहने का मन है कि भाई प्रकृति को बचाएं, क्योंकि अपने घरों में खूब सारे हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। गली मोहल्ले की जो है वो पेड़ों से हरियाली और भी ज्यादा सुंदर होती है। नेचर बचेगा तो हम बचेंगे, और कंक्रीट के महल बेकार है भाई अगर साफ हवा भोजन पानी हमारे पास नहीं है तो। कभी अपना मेरे घर आना, मैं आपको घर की छत दिखाऊंगा अपनी, नीम आम और पीपल के पेड़ के समेत और भी बहुत सारे मैंने पेड़ पौधे लगाए हैं, और बड़ा मजा आता है। तो पौधे के बीच बैठकर चाय पियेंगे मैं और आप, ठीक है। अभी सुन रही है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, मैं पंकज हूँ आपके साथ, और भोर सुहानी शो का टाइम अब यहीं ओवर होता है, और मैं आपसे जल्दी मिलूंगा दोबारा इसी शो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति, नमस्ते।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस आईएमसी के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। ये आयोजन 10 तारीख तक चलेगा। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही ये सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए वैश्विक मंच उपलब्ध कराएगा। आईएमसी 2026 का विषय है स्केल विदाउट बाउंड्रीज, यानी सीमाओं से परे विस्तार। ये डिजिटल नवाचार अगली पीढ़ी की कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी आधारित विकास में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। इसका आयोजन संयुक्त रूप से दूरसंचार विभाग और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की है। श्री मोदी ने नई दिल्ली के सरोजिनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के माध्यम से भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को अवश्य पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का समय है।
1: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य। हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
0: जापान, भूटान, फिलीपींस, बेल्जियम, नेपाल, नाइजीरिया और बोत्सवाना सहित कई देशों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसके लिए सभी का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर को गुजरात के वडनगर से शुरू हुई बाइक सेवा यात्रा भी कल काशी में संपन्न हो गई है। महिला और बाल विकास विभाग का 2 दिन का शिखर सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित होगा। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आयोजित विभागीय सम्मेलनों की श्रृंखला का दूसरा कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाना और महिला तथा बाल विकास से जुड़े कामों को और प्रभावी बनाना है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में जीएसटी विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर एक संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने तथा वैश्विक बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजार नीतियों पर रोक लगाने के उपायों का आह्वान किया गया है। 15 भागीदार देशों द्वारा हस्ताक्षरित ये संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय USTR ने कल रात जारी किया। बयान में देशों ने बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजार नीतियों को समाप्त करने सहित संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन को खत्म करने के उपाय करने का आह्वान किया।

0: సర్ది కట్టుకొని రాదు
1: ఎక్కడికో.

0: जागते रहो जागते रहो,
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है।

0: अफवाहों से,
1: धोखाधड़ी से
0: जागरूक होना है अपने अधिकारों के प्रति,
1: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
0: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
1: सजग भारत,
0: जागरूक भारत,
1: सशक्त भारत।
0: सुनिए सजग भारत
1: हर सोमवार सुबह 11 बजे सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
0: जागरूक बनिए,
1: सजग रहिए।

0: FM Rainbow 101.9 Musically yours.
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9। मैं हूं आपके साथ आरजी रफली ऑन आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9। वेल, स्टूडियो क्लॉक में वक्त हुआ है 11:04:25। तो दोस्तों, कभी आसमां को देखते हुए नो हम अक्सर कहते हैं काश हम भी उड़ पाते, लेकिन कुछ लोग सिर्फ आसमां में उड़ते नहीं हैं, वो हमारी आसमां की हिफाजत करते हैं। और आज ऐसा मोमेंट है जहां हम बात करेंगे उन लोगों की जिनके लिए स्काई इज नॉट जस्ट अ डेस्टिनेशन बट इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। वेल, आज है इंडियन एयरफोर्स डे। हर साल 8 अक्टूबर को हम इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेट करते हैं और 2026 में हम इंडियन एयरफोर्स का 94th राइजिंग डे को मार्क कर रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स की कहानी सिर्फ फाइटर जेट्स, मिसाइल्स और टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, ये कहानी है हिम्मत की, डिसिप्लिन की, डेडिकेशन की और ड्यूटी के सामने खुद को सबसे पहले रखने की। वेल, इंडियन एयरफोर्स की जर्नी 8 अक्टूबर 1932 से शुरू हुई थी। उस वक्त इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। शुरुआत छोटी थी लेकिन विजन बहुत बड़ा था। वक्त के साथ इंडियन एयरफोर्स ने अपनी कैपेबिलिटीज़ को डेवलप किया, नए एयरक्राफ्ट आए, नए टेक्नोलॉजीज़ जुड़ती गई और आज इंडियन एयरफोर्स दुनिया की इम्पोर्टेंट एयरफोर्सेस में अपनी एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी रखती है। लेकिन टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी एडवांस्ड हो, आखिर उसे ऑपरेट कौन करता है? इंसान ही तो है। एक पायलट, एक इंजीनियर, एक टेक्नीशियन, एक ग्राउंड क्रू मेम्बर और एक मेडिकल टीम और हजारों लोग जो बैकग्राउंड में रहकर इंश्योर करते हैं कि मिशन सेफली कंप्लीट हो। यानी जब हम आसमां में एक फाइटर एयरक्राफ्ट को देखते हैं तो हमें सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं देखना चाहिए बल्कि उसके पीछे खड़ी पूरी टीम को याद करना चाहिए। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9।

वेल, हम बात कर रहे हैं आज इंडियन एयरफोर्स के बारे में, क्योंकि 8 अक्टूबर को जो है हर साल हम इंडियन एयरफोर्स डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो इस साल है 94th रेसिंग डे ऑफ इंडियन एयरफोर्स। वेल, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, एयरफोर्स जो है उसका रोल सिर्फ वॉर के वक्त ही नहीं होता है, क्योंकि जब नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं या कोई रेस्क्यू ऑपरेशंस की ज़रूरत होती है या जब लोगों तक एसेंशियल सप्लाइज पहुंचानी होती है, तब भी आर्म्ड फोर्सेस अपनी कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करती है। कहीं पर फ्लड्स हो या अर्थक्वेक हो या ऐसी कोई डिफ़िकल्ट एमरजेंसी सिचुएशन, एयर ऑपरेशंस कई बार ऐसे एरियाज तक पहुंचने में मदद करते हैं जहां रोड या नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन से पहुंचना मुश्किल होता है। और यहीं पर एक सोल्जर की ड्यूटी का दूसरा एस्पेक्ट जो है वो सामने आता है, विच इज़ सर्विस टू द नेशन। देश की सेवा सिर्फ बॉर्डर पर खड़े होकर ही नहीं होती, कभी कभी किसी को रेस्क्यू करना भी देश की सेवा मानी जाती है, या किसी को सेफ लोकेशन तक पहुंचाना भी देश की सेवा होती है, या फिर किसी डिफिकल्ट मूवमेंट में किसी फैमिली को होप देना भी सर्विस टू द नेशन ही माना जाता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 101.9।

0: FM Rainbow 101.9.
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9। तो हम जो है आज बात कर रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के बारे में, क्योंकि आज अक्टूबर को हम मनाते हैं इंडियन एयरफोर्स डे का राइजिंग डे। तो अगर हम द स्पिरिट ऑफ एयरफोर्स की बात करें, तो एक फाइटर पायलट जब एयरक्राफ्ट में बैठता है तो उसके सामने सिर्फ एक मिशन नहीं होता, राइट? और इसीलिए एयरफोर्स ट्रेनिंग में डिसिप्लिन और प्रिसिशन को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है, और आसमां में डिसीजंस के लिए सिर्फ कुछ सेकंड्स मिलते हैं। वहाँ हेसिटेशन की कोई जगह नहीं होती, वहाँ जो है ट्रेनिंग बोलती है, वहाँ टीम वर्क बोलता है, और सबसे बढ़कर ड्यूटी बोलती है। हम आम जिंदगी में अक्सर कहते हैं ना कि कल कर लेंगे, या थोड़ा बाद में करते हैं, या देखते हैं, लेकिन डिफेंस फोर्सेस की दुनिया में टाइमिंग मैटर करता है, प्रिपरेशन मैटर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैटर्स। यही तो लेसन है जो हम इंडियन एयरफोर्स से अपनी एवरीडे लाइफ में भी सीख सकते हैं। डिसिप्लिन छोटी चीज़ नहीं होती है। आप अपने काम में कितनी सिंसियर हैं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कितनी ऑनेस्टी से निभाते हैं, यही आपकी जो है असली स्ट्रेंथ मानी जाती है। आइए सुनते हैं फ्रॉम मिशन मंगल से ये गाना, एंजॉय दिस ट्रैक। सुभाषिया कमिंग अप नेक्स्ट।

है आसमां को छूना, लेकिन सिर्फ ग्लोरी के लिए नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। तो आज इंडियन एयरफोर्स डे पर जब भी आप आसमां की तरफ देखें और कोई एयरक्राफ्ट आपको ऊपर से गुजरता हुआ नज़र आए, एक सेकंड के लिए रुककर सोचिए कितनी ट्रेनिंग, कितनी मेहनत, कितनी डिसिप्लिन और कितने लोगों की डेडिकेशन उस एक फ्लाइट के पीछे होगी, राइट? और आज हम सल्यूट करते हैं उन ब्रेव मैन एंड वुमेन को जो हमारे आसमां की हिफाजत करते हैं। सल्यूट टू देयर करेज, सल्यूट टू देयर डिसिप्लिन एंड सल्यूट टू देयर फैमिलीज और सल्यूट टू द स्पिरिट ऑफ इंडियन एयरफोर्स।

0: FM Rainbow 101.9.
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफ एम रेनबो 101.9। वेल, अब स्टूडियो क्लॉक में वक्त हुआ है 11:31, तो आप सुन रहे हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक ऐसा सेगमेंट जहां हम भारत के अलग अलग राज्यों की कल्चर, ट्रेडिशंस, आर्ट और हेरिटेज को थोड़ा और करीब से जानने की कोशिश करते हैं। और आज हम चलेंगे एक ऐसी जगह जहाँ मिट्टी के रंग भी कहानियाँ सुनाते हैं, कपड़ों पर बनी डिजाइंस भी अपनी पहचान रखती है, और हर हैंडीक्राफ्ट के पीछे एक आर्टिस्ट की मेहनत और जनरेशंस पुरानी ट्रेडिशंस छुपी होती है। जी हाँ, आज बात करते हैं राजस्थान की। वेल, राजस्थान का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? रेगिस्तान, महल, फोर्ट्स, कलरफुल टर्बन्स, फोक म्यूजिक और वाइब्रेंट बाजार्स। लेकिन राजस्थान की खूबसूरती सिर्फ उनकी उसकी आर्किटेक्चर या लैंडस्केप में ही नहीं, बल्कि राजस्थान की एक बहुत बड़ी आइडेंटिटी है उसकी ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। यहाँ का हर क्राफ्ट्स सिर्फ एक डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट नहीं होता, बल्कि वो एक पीस ऑफ कल्चर होता है। तो आइए इस ये आने वाला कुछ वक्त हम सेलिब्रेट करते हैं राजस्थान की आर्ट, क्राफ्ट एंड कल्चर को। बने रहिएगा मेरे साथ ओनली ऑन आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9।

0: FM Rainbow 101.9.
1: Welcome back. आप सुन रहे हैं सेगमेंट एक भारत श्रेष्ठ भारत में. आज हम जो है राजस्थान की आर्ट्स क्राफ्ट्स और हेरिटेज को थोड़ी और नज़दीक से जानने की कोशिश कर रहे हैं. और जब हम राजस्थान की ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स की बात करें और ब्लॉक प्रिंटिंग की जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता. वेल, वुडन ब्लॉक्स को केयरफुली जो है कार्व किया जाता है, फिर उन्हें नेचुरल या ट्रेडिशनल डाइस में डिप करके फैब्रिक पर बार बार स्टैम्प किया जाता है. सोचें, एक आर्टिस्ट एक हाथ में एक छोटा सा वुडन ब्लॉक, सामने एक प्लेन पीस ऑफ फैब्रिक है और धीरे धीरे उस पर एक ब्यूटीफुल पैटर्न जो है क्रिएट हो रहा है. और ये प्रोसेस जितना सिंपल सुनाई देता है एक्चुअली उतना ही प्रिसाइज भी होता है. यानी एक छोटी सी अलाइनमेंट मिस्टेक और पूरा पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है. राजस्थान में बगरू और सांगानेर की ब्लॉक प्रिंटिंग ट्रेडिशंस जो है खास तौर पर फेमस मानी जाती है. और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है, मशीन मेड प्रोडक्ट्स के ज़माने में भी हैंडमेड प्रिंटिंग की अपनी एक स्पेशल चार्म है. तो हर पीस में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, बट वही डिफरेंस उसे जो है यूनिक बनाता है. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 101.9.

FM Rainbow 101.9. वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, और आज हम राजस्थान की आर्ट कल्चर और हेरिटेज को और थोड़े नज़दीक से जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने इस अंतराल से पहले ब्लॉक प्रिंटिंग के बारे में जाना, तो अब बात करते हैं राजस्थान की एक और आइकॉनिक टेक्सटाइल ट्रेडिशन की, वो है बांधनी। आपने कलर्स, कलरफुल दुपट्टा, साड़ीज या टर्बन्स देखे होंगे जिन पर बहुत ही छोटे छोटे डॉट्स का ब्यूटिफुल पैटर्न होता है। ये बांधनी का मैजिक है। फैब्रिक के छोटे छोटे पोर्शंस को केयरफुली जो है टाई करके फिर उसे डाई किया जाता है, और जब नॉट्स खोले जाते हैं तो ब्यूटीफुल पैटर्न्स हमारे सामने आते हैं। यानी कि एक सिंपल पीस ऑफ क्लॉथ और उसमें हंड्रेड्स ऑफ टाइनी डिटेल्स। इफ क्राफ्ट में पेशेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और शायद इसीलिए ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स हमें एक ब्यूटीफुल लेसन भी देते हैं दैट गुड थिंग्स टेक टाइम। आज की फास्ट लाइफ में जहाँ हम हर चीज़ इंस्टेंटली चाहते हैं, राजस्थान के आर्टिसंस हमें पेशेंस, प्रिसिशन और क्राफ्टमैनशिप की वैल्यू भी याद दिलाते हैं। और राजस्थान की आर्ट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, और लिस्ट में आता है एक और फैसिनेटिंग नाम, वो है जयपुर की ब्लू पॉटरी। नाम पॉटरी है, लेकिन इसकी स्पेशलिटी ये है कि ट्रेडिशनल ब्लू पॉटरी जनरली ऑर्डिनरी क्ले पॉटरी से डिफरेंट टेक्निक से बनाई जाती है, और इसमें ब्यूटीफुल ब्लू, टर्कोइश और वाइट पैटर्न्स हमें नज़र आते हैं। यहाँ पे फ्लोरल डिज़ाइंस, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स और ट्रेडिशनल मोटिव से इसे इंस्टेंटली जो है रिकॉग्नाइजेबल बनाते हैं, और यही तो राजस्थान की क्राफ्ट्स की खासियत है। कलर और डिज़ाइन दोनों मिलाकर एक आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9, और मैं हूं आपके साथ आरजी रफली। स्टे ट्यून्ड टू एफएम रेनबो 101.9।

FM Rainbow 101.9. Well, स्टूडियो क्लॉक में वक्त हुआ है 11:50 and 47 seconds इन द स्टूडियो क्लॉक. तो हम बात कर रहे हैं राजस्थान की आर्ट्स, क्राफ्ट और हेरिटेज के बारे में. वेल, राजस्थान में क्राफ्ट की दुनिया में सिर्फ टेक्सटाइल्स और पॉटरी तक ही लिमिटेड नहीं है. यहाँ की लेदर क्राफ्ट, ज्वेलरी, मेटल वर्क, वुड कार्विंग, पपेट्री और डेकोरेटिव हैंडीक्राफ्ट्स की भी यहाँ पे रिच ट्रेडिशन हमें देखने को मिलती है. और फिर आती है राजस्थान की फेमस कठपुतलियाँ, कलरफुल कॉस्ट्यूम्स, एक्सप्रेसिव फेसेस और स्ट्रिंग से कंट्रोल्ड किए हुए मूवमेंट्स. और कठपुतली सिर्फ एक टॉय नहीं है, ये राजस्थान की ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहा है. एक पपेट शो के थ्रू स्टोरीज, लेजेंड्स, ह्यूमर और सोशल मैसेजेस जो है लोगों तक पहुंचाए जाते रहे हैं. सो टेक्निकली एक छोटी सी पपेट भी अपने साथ एक बिग कल्चरल स्टोरी कैरी करती है. तो उसी बात पे चलिए सुनते हैं फिल्म पहेली से ये बहुत ही प्यारा सा गाना. तो बने रहेगा ओनली ऑन आकाशवाणी FM रेनबो 101.9.

0: FM Rainbow 101.9.
1: वेल, हम बात कर रहे हैं राजस्थान की क्राफ्ट आर्ट्स और हेरिटेज के बारे में, लेकिन जब हम किसी ब्यूटीफुल हैंडीक्राफ्ट को देखते हैं तो अक्सर हम सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट को ही देखते हैं, है ना। हम शायद उसके पीछे की आवर्स ऑफ वर्क नहीं देखते, एक आर्टिसन को डिज़ाइन परफेक्ट करने में कितना टाइम लगा होगा, कितनी बार प्रैक्टिस की होगी और कितनी जनरेशन से वो स्किल फैमिली में पास होती आ रही होगी। राजस्थान की ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स की असली स्ट्रेंथ ही इन्हीं आर्टिसंस के हाथ में है। वेल, उनके लिए क्राफ्ट सिर्फ लाइवलीहुड नहीं, ये उनकी धरोहर है, उनकी हेरिटेज है और एक स्किल जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रैवल करती आई है। हम एक ट्रेडिशन को अलाइव रखने में भी अपना छोटा सा कंट्रीब्यूशन जो है हम दे रहे होते हैं व्हेन यू आर बाइंग अ प्रोडक्ट लाइक दैट। और इसी थॉट के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत का आइडिया और ब्यूटीफुल हो जाता है। इंडिया की डाइवर्सिटी सिर्फ लैंग्वेजेस, फूड और फेस्टिवल्स में ही नहीं, बल्कि हमारी डाइवर्सिटी हमारे क्राफ्ट, कलर्स, फैब्रिक्स, म्यूजिक स्टोरीज और आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस में भी है। और राजस्थान हमें बताता है कि एक कल्चर कितना वाइब्रेंट हो सकता है, एक पीस ऑफ फैब्रिक कितनी कहानी हमें सुना सकता है और एक आर्टिसन के हाथ में कितनी जनरेशन्स की लेगेसी को संभाल के रखा है। मैं हूँ आरजे रवली और ये था एक भारत श्रेष्ठ भारत। राजस्थान के रंगों से लेकर भारत की डाइवर्स ट्रेडिशन तक हमारी डाइवर्सिटी ही हमारी स्ट्रेंथ है। स्टे ट्यून्ड टू FM रेनबो 101.9।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफ एम रेनबो 101.9। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे न्यूज़ इन हिंदी फॉलोड बाय न्यूज़ इन इंग्लिश। उसके बाद हम यादों की बारात के साथ हाजिर हो जाएंगे। स्टे ट्यून्ड टू एफ एम रेनबो 101.9।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी नवाचार में भारत के उल्लेखनीय प्रगति को दिखाया जा रहा है। 4 दिवसीय इस सम्मेलन की शुरुआत कल हुई थी। इस वर्ष का विषय है सीमाओं से आगे विस्तार। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस मंच ने भारत में दूरसंचार क्षेत्र और डिजिटल कनेक्टिविटी के विकास को देखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशंस हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने में सुविधा दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार लगभग 25 करोड़ विद्यार्थियों को विभिन्न डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा मंचों से जोड़ने का प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने दीक्षा प्लेटफॉर्म के जरिए भारत में डिजिटल शिक्षा के बढ़ते महत्व के बारे में जानकारी दी।
2: ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमारा एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है। कोविड के दौरान जुलाई 2022 तक इस प्लेटफॉर्म पर 500 करोड़ से ज्यादा लर्निंग सेशन और करीब 6,000 करोड़ लर्निंग मिनट दर्ज हुए। अब हमारा प्रयास है हमारे जितने भी डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम है उनसे करीब 25 करोड़ स्टूडेंट्स को जोड़ सके। यानी साथियों, टेलीकॉम के क्षेत्र में जो रेवोल्यूशन आई है इसका भारत के नागरिक को सीधा सीधा फायदा हुआ है।
1: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि प्रौद्योगिकी न केवल सिर्फ अंतिम गांव तक बल्कि हर एक नागरिक तक पहुंचनी चाहिए। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। बैठक में जीएसटी विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज फिजी में 31वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP31 के वार्ताध्यक्ष क्रिस बोवन के साथ मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में

0: श्री यादव ने कहा कि बैठक में उन्होंने संतुलित और सार्थक परिणामों के लिए भारत की प्रतिबद्धता और COP31 के वार्ता अध्यक्ष के साथ मिलकर काम करने की पुष्टि की। भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर इनाम की घोषणा करके आतंकवादी गुटों को अपने समर्थन की बात छिपाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने कहा कि दुनिया 9/11, 26/11 और पहलगाम आतंकवादी हमलों को नहीं भूली है। देश आज भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ मना रहा है। 8 अक्टूबर 1932 को इसका गठन किया गया था। इस महत्वपूर्ण अवसर ने वायुशक्ति के एक ऐसे दृष्टिकोण की शुरुआत की जिसने आने वाले दशकों के लिए देश की रक्षा प्रणाली को आकार दिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी वायु योद्धाओं, अनुभवी सैनिकों और उनके परिवारों को बधाई दी है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज सुबह गोवा में उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। नाना पाटेकर हिंदी और मराठी सिनेमा के जाने माने अभिनेताओं में शामिल थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत कम अभिनेताओं में वो गहराई, अलग पहचान और दमदार मौजूदगी थी जो श्री नाना पाटेकर में थी।
1: वो एक बेहतरीन कलाकार थे जिन्होंने अलग अलग किरदारों के माध्यम से दर्शकों का दिल जीता। नाना पाटेकर जी का जीवन तिरंगे की आन बान और शान के लिए समर्पित रहा। वो बंधनों में नहीं रहे, परिंदे की तरह फिल्मों के आसमान में उड़े।
0: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi today inaugurated the 10th edition of the India Mobile Congress IMC at Yashobhoomi in New Delhi today. The four-day event, which began yesterday, showcasing India's remarkable progress in telecommunications, digital connectivity and technological innovation. The theme of IMC 2026 is Scale Without Boundaries, reflecting India's growing capabilities in digital innovation, next-generation connectivity and technology-led growth. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi said, "The Indian Mobile Congress platform has witnessed the evolution of the telecom sector and digital connectivity in India." He said today, 5G connectivity has reached every district of the country. Mr. Modi added that there are now more than 5,50,000 base stations to operate 5G connectivity across India.
1: बीते वर्षों में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के माध्यम से बहुत कुछ हासिल किया है। हमारे सामने विकसित भारत का एक विराट संकल्प है। इसके लिए हमें अपने प्रयासों को निरंतर व्यापक करते रहना है। हमें आईएमसी को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जो टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट और आइडिया का एक जंक्शन बन सके।
2: On the occasion, Union Communications Minister Jyotiraditya Scindia said Prime Minister Modi has always emphasized that technology must reach not only the last village but every single citizen. The minister lauded equipment manufacturers, telecom operators and every employee of the telecom sector for their contribution in making 5G the fastest adopted 5G technology in the world. He said India today has 550 million 5G users. He said IMC 2026 will showcase India's digital capabilities.
3: From a meager base of only 60 million broadband customers, we today in India have over 1.1 billion broadband customers, 1.35 billion mobile customers. IMC 2018 talked about connecting, creating and innovating. And the Prime Minister has always insisted that technology must permeate not only the last village, but reach every single citizen.
2: The 57th GST Council meeting will be held at Bharat Mandapam in New Delhi today. Chaired by Finance Minister Nirmala Sitharaman, the meeting

0: FM Rainbow 101.9।
1: well, दोस्तों कुछ कहानियां जो है वक्त के साथ पुरानी हो जाती है, लेकिन कुछ चेहरे, कुछ आवाजें और कुछ डायलॉग्स वक्त के साथ और भी यादगार बन जाते हैं। और यादों की बारात में आज हम याद कर रहे हैं एक ऐसे एक्टर को जिनकी सिर्फ स्क्रीन प्रेजेंस ही नहीं बल्कि उनकी आवाज भी एक पहचान है। एक ऐसी आवाज जो डायलॉग बोलती नहीं, डायलॉग को एक अंदाज देती थी। आज की कहानी है राजकुमार की, एक ऐसा नाम जिसे हिंदी सिनेमा में उनके डिस्टिंक्टिव डायलॉग डिलीवरी, बैरिटोन वॉइस और एक खास रॉयल स्क्रीन पर्सनालिटी के लिए याद किया जाता है। फिल्म फेयर के आर्काइवल मटेरियल में भी उनकी डायलॉग डिलीवरी और

स्क्रीन स्टाइल को उनकी पहचान का इम्पोर्टेंट हिस्सा बताया गया है। लेकिन दोस्तों, राजकुमार बनने से पहले वो थे कुलभूषण पंडित। तो उनकी बारे में या उनकी जर्नी के बारे में हम बात करेंगे आज। तो बने रहिएगा मेरे साथ सिर्फ यादों की बारात पर ऑन FM रेनबो 101.9। मैं हूँ आपके साथ RJ रवि।

0: बॉम्बे आए और फिल्मों में आने से पहले बॉम्बे पुलिस में सब इंस्पेक्टर की तरह उन्होंने काम किया था। सोचिए, एक पुलिस ऑफिसर और फिर वही इंसान आगे चलकर हिंदी सिनेमा के सबसे मेमोरेबल डायलॉग्स वॉइसेस में से एक बन गए। यानी कहानी में सिनेमा शुरू होने से पहले ही एक ट्विस्ट था। फिल्म दुनिया में उनकी जर्नी जो है 1952 की रंगीली रंग मूवी से शुरू हुई थी। इसके बाद अनमोल सहर, घमंड जैसे फिल्म्स आए थे रिलीजेस के लिए, लेकिन शुरुआत जो है उनके लिए आसान नहीं था। स्ट्रगल था, वेट था और अपनी जगह बनाने का पेशेंस था। और फिर आई 1957 की फिल्म महबूब खान की मदर इंडिया, और इस फिल्म ने राजकुमार को एक इम्पॉर्टेंट एक्टर के रूप में इस्टेब्लिश करने में मदद किया। मदर इंडिया अपने दौर की बहुत बड़ी सिनेमैटिक सक्सेस बनी और आज भी हिंदी सिनेमा का लैंडमार्क फिल्म्स में से गिनी जाती है। कभी कभी करियर में एक फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं होती, वो एक टर्निंग पॉइंट होती है, और एक्टर राजकुमार के लिए मदर इंडिया कुछ ऐसी ही फिल्म थी। तो चलिए उसी फिल्म से सुनते हैं ये गाना, और बने रहिएगा हमारे साथ ओनली ऑन FM रेनबो 101.9। और गाना सुनने से पहले एक छोटा सा अंतराल, स्टे ट्यून्ड विद मी।
1: మొదలు పెడదామా ఇన్వెస్టింగ్ పాఠాన్ని?

0: FM Rainbow 101.9.
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9। यादों की बारात सेगमेंट चल रहा है और हम जो है बात कर रहे हैं या याद कर रहे हैं राजकुमार को उनकी बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पर। वेल, मदर इंडिया के बाद जो है राजकुमार ने पैगाम, दिल अपना और प्रीत पराए, घराना और दिल एक मंदिर जैसे फिल्म्स में काफ़ी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस दी। पैगाम में उन्होंने दिलीप कुमार के साथ काम किया और केयरिंग एल्डर ब्रदर के रोल के लिए उन्हें काफ़ी अप्रिसिएशन भी मिला। और फिल्म दिल एक मंदिर, ये फिल्म तो अपने इमोशनल परफॉर्मेंसेस के लिए आज भी याद की जाती है। राजकुमार, राजेंद्र कुमार और मीना कुमारी, ये एक इमोशनल ट्रायंगल और एक ऐसा कैरेक्टर जिसमें सैक्रिफाइस और डिग्निटी दोनों नजर आए। फिल्म के लिए राजकुमार को फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड भी मिला। लेकिन 1965 ने राजकुमार के करियर का एक नया डायमेंशन दिया। दो इम्पॉर्टेंट फिल्म्स वक्त और काजल, वक्त में उनकी सोफिस्टिकेटेड पर्सनैलिटी, स्टाइल और डायलॉग डिलीवरी ने ऑडियंस का अटेंशन खींच लिया था और इसी फिल्म के साथ उनका एक ट्रेडमार्क एक्सप्रेशन भी पॉपुलर हुआ जो है जानी। एक छोटा सा लव्स, लेकिन राजकुमार के अंदाज में वो एक पूरी पर्सनालिटी बन गया और वक्त के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी मिला। और फिर फिल्म काजल, जहां उनकी परफॉर्मेंस को भी काफ़ी अप्रिसिएशन मिला और उन्हें बेस्ट एक्टर कैटेगरी में फिल्म फेयर में नॉमिनेशन मिला। और फिल्म वक्त की बात हो और उस फिल्म का म्यूज़िक भी यादों को एक अलग ही दुनिया खोल देता है। तो आइए सुनते हैं ये एवरग्रीन क्लासिक फ्रॉम द मूवी वक्त।

0: FM Rainbow 101.9.
1: वेलकम बैक. हम बात कर रहे हैं यादों की बारात में एक्टर राजकुमार की, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन. वेल, दोस्तों, कुछ एक्टर्स को देखकर हम उन्हें पहचानते हैं, कुछ एक्टर्स को सुनते ही हम कह देते हैं, अरे ये तो राजकुमार है. उनकी आवाज़ में एक नेचुरल डेप्थ थी, उनकी डिक्शन जो है बहुत ही क्लियर था. उर्दू के लफ्ज़ों का वो एक एहसास, एक एलिगेंस के साथ बोलते थे. और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उनकी डिलीवरी में जल्दी नहीं होती थी. वो डायलॉग को बोलते नहीं थे, शायद उसे ज़्यादा वक्त देते थे. एक पॉज, फिर एक लफ्ज़, फिर वो ख़ास एक्सप्रेशन, और ऑडियंस वेट करती थी कि अब क्या कहा जाएगा. इसी वजह से उनकी डायलॉग डिलीवरी उनकी स्क्रीन आइडेंटिटी का एक मेजर पार्ट बन गया. फिल्म फेयर ने भी नोट किया है कि राइटर्स उनके लिए स्पेशली मेमोरेबल लाइंस लिखने लगे थे, और फिल्म वक्त के बाद उनका ये डिस्टिंक्टिव स्टाइल और स्ट्रॉन्ग होता गया. उनकी पर्सनालिटी में एक रॉयल टच था, एलिगेंट क्लोथ्स, कॉन्फिडेंस और वो सिग्नेचर वाइट शूज़. राजकुमार का ये स्टाइल जो है सिर्फ फैशन नहीं था, वो उनकी स्क्रीन प्रेजेंस या उनकी स्क्रीन पर्सोनों का एक पार्ट बन गया था. मतलब कितनी इंटरेस्टिंग है ना, कि कैसे सिर्फ डायलॉग से और किस तरह उनके एक्सप्रेशंस बदलते थे.

तो सब जो है नोट किया जाता था या वेट किया जाता था कि अगला क्या होगा। तो फिलहाल आइए सुनते हैं हम ये बहुत ही मशहूर फिल्म नीलकमल से, आ जा तुझको पुकारे मेरा प्यार। सो एंजॉय दिस ट्रैक।

वो गाना था फ्रॉम द मूवी नील कमल, गाया है मोहम्मद रफ़ी ने। आप सुन रहे हैं यादों की बारात ऑन आकाशवाणी FM रेनबो 101.9 विथ मी RG रवली। तो इस यादों की बारात के सफ़र में हम बात कर रहे हैं एक्टर राजकुमार की, तो अगर हम 1960s के सेकेंड हाफ की बात करें, या यूँ कह लीजिए उनका गोल्डन फेज, तो 1960s के सेकेंड हाफ में राजकुमार ने हमराज, नीलकमल, मेरे हुजूर जैसे फिल्म्स किए। हमराज जो है एक मेजर कमर्शियल और क्रिटिकल सक्सेस फिल्म बनी, और फिर फिल्म नीलकमल मनोज कुमार और वहीदा रहमान के साथ एक ऐसा रोल जिसमें लव, लॉन्गिंग और मिस्ट्री का इमोशनल कॉम्बिनेशन था। राजकुमार की एक्टिंग का एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये था कि उन्हें सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप के एक्टर की बॉक्स में रखना मुश्किल था। कभी इंटेंस तो कभी रोमांटिक, कभी सोफिस्टिकेटेड तो कभी ऑथोरेटिव, और कभी एक ऐसा कैरेक्टर जिसके सिर्फ डायलॉग ही सीन का मूड चेंज कर दे। और अगर 1970s की बात करें तो उस दौरान भी राजकुमार का स्क्रीन जर्नी इंटरेस्टिंग बनी रही। 1970 में आई फिल्म हीर रांझा, प्रिया राजवंश के ऑपोजिट और मदन मोहन का म्यूजिक, क्या कहना। और इस फिल्म को जो है मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना ये दुनिया ये महफिल आज भी अपने इमोशनल डेप्थ के लिए याद किया जाता है। और फिर 1972 में आई फिल्म पाकीज़ा, मीना कुमारी, कमल अमरोही, नौशाद का म्यूज़िक और राजकुमार का एक रोमांटिक रीडिफाइंड अंदाज़। राजकुमार के बारे में कभी ये कहा गया कि उनका पर्सोना रोमांटिक हीरो के कन्वेंशनल माउंड में फिट नहीं होता, लेकिन पाकीज़ा, हीर रांझा और लाल पत्थर जैसे फिल्म्स ने उस परसेप्शन को एक अलग पर्सपेक्टिव दिया। फिल्म फेयर के रिट्रोस्पेक्टिव में भी इन फिल्म्स को उनके रोमांटिक परफॉर्मेंसेस की कॉन्टेक्स्ट में हाईलाइट किया गया है। और फिल्म पाकीज़ा का वो पोएटिक एटमोसफियर, वो तहजाब, वो तहजीब और वो डायलॉग्स, सब कुछ जैसे एक दूसरे में घुला हुआ था। तो चलिए फिल्म पाकीज़ा से ये गाना सुनते हैं। स्टे ट्यून्ड टू FM रेनबो 101.9।

वक्त बदलता रहा, सिनेमा बदलता रहा, नए स्टार्स आए, नए स्टाइल्स आए, लेकिन राजकुमार की एक चीज़ कांस्टेंट रही, वो थी उनकी पर्सनालिटी। 1970s के बाद उन्होंने कर्मयोगी जैसे फिल्म्स में मेमोरेबल रोल किया और 1990s में भी वो स्क्रीन पर एक्टिव रहे। 1990s में पुलिस पब्लिक और 1991 में सौदागर, और यहाँ एक ब्यूटीफुल रीयूनियन भी हुआ था पैगाम में। साथ काम करने के डिकेड्स के बाद जो है राजकुमार और दिलीप कुमार दोबारा एक फिल्म में सामने हमारे नज़र आए थे, वो था फिल्म सौदागर। दो लेजेंडरी एक्टर्स एक ही स्क्रीन पर, और ऑडियंस के लिए वो सिर्फ एक फिल्म नहीं था, वो एक सिनेमैटिक मोमेंट था। फिल्म फेयर के इंटरव्यू में राजकुमार के बेटे पूर्व राजकुमार ने भी सौदागर के मनाली शूट की मेमोरीज शेयर की थी, जहां उन्होंने राजकुमार और दिलीप कुमार के फिल्म के लिए रिहर्स करते उन्होंने देखा था। और फिर उसके बाद 1993 में आई फिल्म तिरंगा। ये फिल्म जो है उनकी लेटर करियर की एक इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सक्सेस बनी थी, और उसके बाद बेताज बादशाह, जवाब और गॉड एंड गन जैसे फिल्म्स आई, और फिल्म गॉड एंड गन जो है उनकी लास्ट फिल्म अपियरेंस रही। आप सुन रहे हैं यादों की बारात ऑन आकाशवाणी FM रेनबो 101.9।

अभी आपने सुना फिल्म हमराज से महेंद्र कपूर के आवाज़ में नीले गगन के तले, और आप सुन रहे हैं यादों की बारात ऑन एफएम रेनबो 101.9। और हम बात कर रहे हैं राजकुमार के बारे में उनकी बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पर। मैं दोस्तों, सिनेमा में कुछ एक्टर्स जो है अपनी फिल्मोग्राफी के लिए याद रहते हैं, तो कुछ अपने कैरेक्टर्स के लिए, और वही कुछ अपने सॉन्ग्स के लिए, और कुछ अपनी आवाज़ के लिए। और एक्टर राज कपूर उन्हीं एक्टर्स में से एक हैं। उनकी वॉइस, उनकी उर्दू डिक्शन, उनका पॉज, उनकी ड्रामेटिक डिलीवरी, उनकी विट और उनका सरकाज्म, और वो एक खास कॉन्फिडेंस, सब मिलकर एक ऐसा स्क्रीन परसोना बनाते हैं जो किसी और से कंफ्यूज नहीं होता। आप उनकी आवाज़ सुनकर पहचान सकते हैं कि ये राजकुमार है। और शायद एक बड़े एक्टर की सबसे बड़ी पहचान भी यही होती है कि वक्त बदल जाए, सिनेमा बदल जाए, जनरेशन बदल जाए, लेकिन उनका अंदाज़ कॉपी नहीं होता।

0: FM Rainbow 101.9।
1: आप सुन रहे हैं यादों की बारात और हम बात कर रहे हैं राजकुमार जी के बारे में। वेल, राजकुमार जी की कहानी हमें सिर्फ एक एक्टर की जर्नी नहीं बताती है, ये हमें बताती है कि कभी कभी किसी आर्टिस्ट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है उनकी इंडिविजुअलिटी। और आज के सिनेमा में जब हम स्पीड, स्पेक्टिकल और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो पुरानी सिनेमा की वो दुनिया याद आती है जहां एक एक्टर कैमरा के सामने खड़ा होता था, एक डायलॉग बोलता था और एक पॉज लेता था और पूरा सीन उसका हो जाता। राजकुमार भी ऐसे ही एक्टर थे। उनकी फिल्म्स देखी जा सकती है लेकिन उनकी डायलॉग डिलीवरी सुनी जाती है, महसूस की जाती है और याद रह जाती है। तो आज की यादों की बारात में एक सलाम उस आवाज को, उस अंदाज को और उस एक्टर राजकुमार को। मैं हूँ आरजे रवली और ये थी आज की यादों की बारात। मिलते हैं फिर ऐसे ही एक और कहानी, एक और चेहरे और कुछ और खूबसूरत यादों के साथ। स्टे ट्यून्ड टू एफएम रेनबो 101.9।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9 पर. मैं हूं आपके साथ आरजी रवली. वेल दोस्तों, कभी आपने किसी पेड़ के नीचे बैठकर सुकून महसूस किया है, या कभी बारिश के बाद वो मिट्टी की खुशबू आपको बचपन की याद दिला गई है कभी, या कभी किसी जंगल की हरियाली देखकर आपको लगा हो कि नेचर के पास हमारी हर परेशानी का एक साइलेंट आंसर है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन पेड़ पौधों की देखभाल करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी डेडिकेट कर देना कैसा होता है? आज मैं आपको एक ऐसी ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी वुमेन की कहानी सुनाने वाली हूँ दिले रुबानी में, जिनकी ज़िंदगी हमें सिखाती है कि बड़ा काम करने के लिए ना बड़ी डिग्री ज़रूरी है, ना बहुत सारी रिसोर्सेज, और ना ही दुनिया भर की रिकग्निशन. तो दिले रुबानी में आज हम बात करने वाले हैं कर्नाटका की एक ऐसी एनवायरमेंटलिस्ट की जिन्हें दुनिया इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट के नाम से जानती है. और वो शख्स है तुलसी गौड़ा, एक ऐसी महिला जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा पेड़ पौधों को समझने में, उनकी देखभाल करना और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में बिता दिया. और उनकी कहानी सिर्फ एनवायरनमेंट कंजर्वेशन तक ही नहीं है, ये एक ऐसी इंस्पायरिंग जर्नी है जो हमें बताती है कि नॉलेज सिर्फ क्लासरूम्स में नहीं मिलता और कंट्रीब्यूशन करने के लिए किसी बड़े प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं होती. तो चलिए आज जानते हैं तुलसी गौड़ा जी की लाइफ के बारे में, उनकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी वर्क के बारे में, और उनकी जर्नी से हम अपनी लाइफ में शायद कुछ सीख सकें. स्टे ट्यून टू एफएम रेनबो 101.9.

0: FM Rainbow 101.9.
1: वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं दिल ए रूबानी और इस सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी वुमेन के बारे में, तुलसी गौड़ा. तुलसी गौड़ा जी जो है कर्नाटका के उत्तरा कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट के होनाली विलेज से बिलोंग करती थी. वो हालांकि ट्राइबल कम्युनिटी से थी और उनका बचपन बहुत ही डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस में गुजरा. उनके परिवार की फाइनेंशियल कंडीशंस भी अच्छी नहीं थी. उन्हें फॉर्मल एजुकेशन हासिल करने का मौका ही नहीं मिला. लेकिन लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ हर बार स्कूल या कॉलेज के थ्रू ही नहीं आती. तुलसी गौड़ा ने बहुत ही छोटी उम्र से अपनी माँ के साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नर्सरी में काम करना शुरू किया. वहाँ उनका काम सीड्स की देखभाल करना और छोटे प्लांट्स को ग्रो करने में मदद करना था. मतलब इमेजिन कीजिए, एक छोटी सी बच्ची जिसके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, जो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए काम कर रही हैं, लेकिन धीरे धीरे वही नर्सरी उनकी लर्निंग स्पेस बन जाती है. जहां दूसरे लोग सिर्फ पौधे देखते थे, तुलसी गौड़ा उनका ग्रोथ पैटर्न्स, उनके सीड्स और उनकी नीड्स को समझने लगी. उन्होंने नेचर को ही अपना टीचर बना लिया और यही उनकी स्टोरी का सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन है कि लर्निंग इज नॉट लिमिटेड जस्ट टू अ क्लासरूम. हम सभी के लाइफ में कोई ना कोई लर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है. कभी हम ही अपने वर्क से सीखते हैं तो कभी अपनी एक्सपीरियंसेस से और कभी उन लोगों से जो हमारे आसपास होते हैं. तुलसी गौड़ा ने भी अपनी एक्सपीरियंस को नॉलेज में बदला और उस नॉलेज को अपनी लाइफ का पर्पस बना दिया. उन्होंने नर्सरी में लगभग 35 ईयर्स डेली वेज वर्कर के रूप में काम किया. बाद में उनकी डेडिकेशन और बोटानिकल नॉलेज को रिकॉग्नाइज करते हुए उन्हें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में परमानेंट पोजीशन मिली, जहां उन्होंने लगभग 15 साल काम किए. सोचिए कितने सालों का पेशेंस, कितनी मेहनत और कितना कमिटमेंट. ये ओवरनाइट सक्सेस की स्टोरी बिल्कुल नहीं है, ये डिकेड्स ऑफ हार्ड वर्क की कहानी है.
2: మొదలు పెడదామా ఇన్వెస్టింగ్ పాఠాన్ని?

वेल स्टूडियो क्लॉक में वक्त हुआ है 1:15 और हम बात कर रहे हैं दिल रुबामी में तुलसी गौड़ा जी के बारे में। वेल कभी कभी हम अपनी लाइफ में रिजल्ट्स जो है वो जल्दी चाहते हैं, राइट? हम कोई नया काम शुरू करते हैं और कुछ ही दिनों में सक्सेस एक्सपेक्ट करने लगते हैं, लेकिन नेचर हमें एक डिफरेंट लेसन देती है। एक सीड को ट्री बनने में काफ़ी वक्त लगता है, उसे सनलाइट चाहिए, पानी चाहिए, मिट्टी चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट टाइम चाहिए। हमारी लाइफ में भी ग्रोथ इसी तरह होती है। और अब सवाल ये है कि तुलसी गौड़ा को इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट क्यों कहा जाता था? अब इंसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है नॉलेज का एक बहुत बड़ा सोर्स, और तुलसी जी के पास फॉरेस्ट, ट्रीज, सीड्स और प्लांट्स के बारे में एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेडिशनल नॉलेज था। वो डिफरेंट स्पीशीज़ के ट्रीज़ को आइडेंटिफाई कर सकती थी, उन्हें पता था कि सीड्स जो है वो कब कलेक्ट करनी चाहिए, उन्हें कैसे हैंडल करना है और उनसे हेल्थी सैपलिंग्स कैसे वो ग्रो किए जा सकते हैं। और उनकी एक खास एबिलिटी थी कि वो मदर ट्रीज़ को आइडेंटिफाई करती थी। मदर ट्री एक ऐसा मैच्योर ट्री होता है जो सीड्स प्रोड्यूस करता है और फॉरेस्ट की जो है नेक्स्ट जनरेशन के ग्रोथ में एक बहुत ही अहम रोल प्ले कर सकता है। और हेल्दी सीड्स कलेक्ट करना और उन्हें सही कंडीशंस में ग्रो करना फॉरेस्ट रीजनरेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और तुलसी जी इस प्रोसेस को एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के थ्रू समझ चुकी थी। उनके लिए फॉरेस्ट सिर्फ ट्रीज का कलेक्शन नहीं था, वो फॉरेस्ट को एक लिविंग सिस्टम की तरह समझती थी जहाँ सॉइल, सीड्स, प्लांट्स, एनिमल्स और एनवायरनमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड होते थे। और इसी नॉलेज की वजह से उन्हें उनकी कम्युनिटी में ट्री गॉडेस भी कहा जाता था। अब एक इंटरेस्टिंग बात सोचिए, उन्होंने फॉर्मल क्लासरूम्स में बॉटनी नहीं पढ़ी थी, लेकिन उनके पास नेचर को ऑब्जर्व करने का डिकेड्स लॉन्ग एक्सपीरियंस था। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि फॉर्मल एजुकेशन की इम्पोर्टेंस कम है, बल्कि उनकी स्टोरी हमें बताती है

कि फॉर्मल एजुकेशन और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों अपनी अपनी जगह वैल्यूबल है ना। बुक्स हमें कॉन्सेप्ट समझाती है और रियल लाइफ एक्सपीरियंस उन कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली समझने में हमारी हेल्प करती है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 101.9।

आप सुन रहे हैं दिल ए रुबानी और हम बात कर रहे हैं तुलसी गौड़ा जी के बारे में। वेल, तुलसी जी ने जो है अपनी ज़िंदगी के कई डिकेड्स फॉरेस्ट कंजर्वेशन को डेडिकेट किया है। उनके नाम के साथ हज़ारों सैपलिंग्स लगाने और उनकी देखभाल करने का कंट्रीब्यूशन जुड़ा है। उनकी लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन के एस्टिमेट्स अलग अलग रिपोर्ट्स में वेरी करते हैं, लेकिन उनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट वाइडली रिकॉग्नाइज्ड है और उनकी मेहनत को सिर्फ उनकी कम्युनिटी ने ही नहीं बल्कि नेशनल लेवल पर भी रिकॉग्नाइज किया गया। 1986 में उन्हें इंदिरा प्रियदर्शनी विश्वामित्र अवार्ड से ऑनर किया गया और फिर 1999 में उन्हें कर्नाटका राज्योत्सव अवार्ड से भी पुरस्कृत किया और फिर 2021 में उन्हें इंडिया के प्रेस्टीजियस सिविल ऑनर्स में से एक पद्मश्री से सम्मानित किया गया उनके एनवायरमेंटल कंजर्वेशन वर्क के लिए। जब वो पद्मश्री रिसीव करने पहुंची थी, उनका ट्रेडिशनल हालांकि अटायर और बेरफुट अपीयरेंस भी लोगों के बीच बहुत नोटिसेबल रहा, लेकिन उनकी स्टोरी की रियल ब्यूटी सिर्फ अवार्ड रिसीव करने में नहीं है। उनकी रियल अचीवमेंट वो सारे साल है जो उन्होंने क्वाइटली अपना काम को दिया, वो सारे सीड्स जो उन्होंने नर्चर किए और वो सारे सैपलिंग्स जिनकी ग्रोथ में उन्होंने उन्होंने हेल्प किया और वो नॉलेज जो उन्होंने अपनी कम्युनिटी और यंगर जनरेशन्स के साथ शेयर की। रिकॉग्निशन में कम वन डे राइट, बट मीनिंगफुल वर्क ऑफन बिगिंस लॉन्ग बिफोर एनीवन एल्स नोटिसेस। और ये बात हम सबकी लाइफ पर भी अप्लाई होती है। आप स्टूडेंट हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, होममेकर हैं या आर्टिस्ट हैं या बिजनेस चला रहे हैं, आप जो भी काम करते हैं उसमें सिंसियरिटी कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। हर काम का रिजल्ट इमीडिएटली विजिबल नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मेहनत वेस्ट हो रही है। कभी कभी आपकी छोटी सी एफर्ट का इम्पैक्ट आपको बहुत बाद में दिखता है, बिल्कुल एक सीड की तरह।

0: FM Rainbow 101.9.
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं दिले रुबानी में तुलसी गौड़ा की कहानी और उनकी इंस्पिरेशनल जर्नी से हम बात कर रहे हैं और उनकी लाइफ से क्या हम सीख सकते हैं, राइट? कभी कभी हमारी डेली हैबिट्स को थोड़ा एनवायरमेंटली फ्रेंडली बनाना भी एक अच्छी शुरुआत हो सकती है, राइट? क्योंकि हम दुनिया को एक दिन में तो बदल नहीं सकते, राइट? तो छोटी छोटी चीज़ों से हमारे आसपास की अगर हम उनमें शुरुआत करें तो लॉन्ग रन में वी कैन डेफिनेटली बी अ हेल्पिंग हैंड इन मेकिंग अ डिफरेंस टू द एनवायरमेंट एटलीस्ट, राइट? तो तुलसी गौड़ा जी के लाइफ में हमें ये दिखाती है कि डेडिकेशन का मतलब सिर्फ अपने लिए कुछ अचीव करना नहीं, बल्कि अपने काम के थ्रू दूसरों के लिए भी कुछ मीनिंगफुल क्रिएट करना है। और आज जब हम किसी इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में बात करते हैं, करेज और डिटर्मिनेशन की फीलिंग जो है नेचुरली सामने आती है। और अगर हम इनकी स्टोरी सिर्फ पास्ट के बारे में ही नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें उन्होंने नेचर

कंजर्वेशन के लिए जो काम किया है उसकी इम्पोर्टेंस जो है आज भी उतनी ही बनी हुई है। उनकी लाइफ हमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ छोड़ती है कि हम अपने बाद दुनिया के लिए क्या छोड़कर जाना चाहते हैं। क्या हम सिर्फ अपनी अचीवमेंट और पोजिशंस के बारे में सोचेंगे, या हम फिर कुछ ऐसा भी कर सकते हैं जो फ्यूचर जनरेशंस के लिए यूज़फुल हो। और तुलसी गौड़ा के लिए वो लेगेसी थी उनकी ट्रीज, फॉरेस्ट, ट्रेडिशनल नॉलेज और नेचर के प्रति वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्होंने हमें दिखाया है कि एक्सपर्टीज डेवलप करने के लिए क्यूरियोसिटी ज़रूरी है, अपने काम में एक्सेलेंस लाने के लिए डेडिकेशन काफ़ी ज़रूरी है। और उनकी कहानी जो है वुमेन एम्पावरमेंट के पर्सपेक्टिव से भी इंस्पायरिंग है। एक ट्राइबल वुमेन जिसे फॉर्मल एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, अपने एक्सपीरियंस और डेडिकेशन के थ्रू उन्हें नेशनल रिकॉग्निशन तक उनकी जर्नी जो है वहाँ तक पहुँची। लेकिन उनकी पहचान क्या सिर्फ एक अवार्ड तक लिमिटेड है? नहीं, वो अपनी नॉलेज, अपनी वर्क और नेचर के साथ अपनी लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप के लिए जो है जानी जाती है, राइट? तो ये उन लोगों और कम्युनिटीज़ को रिकॉग्नाइज करने के बारे में भी है जो जेनरेशन से नेचर के साथ कनेक्टेड हुए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 101.9।

0: FM Rainbow 101.9.
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं दिले रूबानी ऑन आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9। तो जहां आज हम एक ऐसी यू नो एक्स्ट्रॉर्डिनरी विमेन की कहानी आज हमने जानने की कोशिश की है कि कैसे इवन दो उनकी यू नो सर्कमस्टेंसेस या फिनेंशियल सर्कमस्टेंसेस अच्छी नहीं थी, उसके बावजूद उन्होंने अपनी लाइफ को उन्हें वहाँ रुकने नहीं दिया। तो अगर फिर से हम उसी बात पे आए कि क्या हम तुलसी गौड़ा जी के लाइफ से क्या सीख सकते हैं, तो लेसन वन ये होगा कि हम अपनी बैकग्राउंड को अपनी फ्यूचर डिफाइन नहीं करने दे सकते, क्योंकि जैसे मैंने कहा उनकी चाइल्डहुड में कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं थी कि वो यू नो फॉर्मल एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी उन्हें नहीं मिली, पर उन्होंने अपनी सर्कमस्टेंसेस को जो है अपना एंड पॉइंट नहीं बनने दिया। उन्हें जो भी अवेलेबल था उन्होंने नेचर को ही अपना टीचर बना लिया, एंड फिर जो ट्रेडिशनल नॉलेज उन्होंने अपनी यंगर जनरेशन्स और अपनी कम्युनिटी का साथ शेयर किया है

वो जो है फॉरेस्ट में काफ़ी हेल्पफुल है फॉर रीजनरेशन ऑफ दोज ट्रीज एंड द कंटिन्यूटी ऑफ यू नो अ वाइडर एंड अ ग्रीनर फॉरेस्ट. और दूसरी लेसन अगर हम उनसे सीख सकते हैं वो है कंसिस्टेंसी. और क्योंकि क्विक रिजल्ट से ज़्यादा कंसिस्टेंसी मैटर करता है. अगर हम उनकी लाइफ के बारे में भी देखें तो उन्होंने इतना काम किया है अपनी लाइफ में और यू नो एकदम से इंस्टेंट रिजल्ट्स तो बिल्कुल भी आए नहीं, राइट? काफ़ी कंसिस्टेंट रही है वो अपने लिए, काफ़ी पेशेंस है, इतने सालों की मेहनत और इफ़र्ट का रिजल्ट ही है जहाँ पे आज वो जाके एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया फॉर हर वर्क इन एनवायरमेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी. और थर्ड बात ये है कि नॉलेज जो है काफ़ी वैल्यूबल हो जाता है जब हम शेयर करते हैं, क्योंकि नॉलेज हम अपने साथ ले जाके क्या करेंगे, राइट? हमें अपनी फ्यूचर जनरेशंस के साथ बांटना ये काफ़ी ज़रूरी होता है. फोर्थ बट नॉट द लीस्ट, नेचर नीड्स एक्शन नॉट जस्ट अप्रिसिएशन, क्योंकि हम नेचर की ब्यूटी को कितना अप्रिशिएट करते हैं, राइट? क्या बट हम अपनी तरफ से क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? एक छोटा सा कदम भी जो है वो काफ़ी एक क्या कह सकते हैं, एक बड़ा कदम हो सकता है इन द लॉन्ग रन या फ्यूचर जनरेशंस के लिए. तो आसपास की कम्युनिटीज में या अपने ही घर पे आप क्या स्टार्ट कर सकते हो विद अ माइनर चेंज? जस्ट लुक इनटू इट और फिर देखिए कि शायद क्या बदलाव आप ला सकते हैं फ्रॉम योर एंड. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी फ्रॉम रेनबो 101.9.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9। तो दोस्तों, आज दिले रुबानी में हमने जाना तुलसी गौड़ा जी की कहानी के बारे में, कैसे विदाउट इवन बीइंग नो फाइनेंशियल कंडीशंस, उनके अच्छे ना होने के बावजूद भी कैसे उन्होंने अपनी सीखना जो वहाँ पे था, जब उन्होंने बचपन में ही नर्सरी में काम करना शुरू किया, तो कैसे उन्होंने नेचर को अपना टीचर बना लिया और फिर कैसे वो यू नो ट्रीज को एक लिविंग बींग्स की तरह उन्होंने ट्रीट किया, और फिर कैसे वो सैपलिंग्स को प्लांट करती थी, कैसे उन्हें सीड्स का देखभाल करना, ये सब कुछ उन्होंने बहुत ही डेडिकेशन सिंसियरिटी के साथ सीखा। और फिर जो भी नॉलेज उन्होंने एकत्रित किया है वो उन्होंने अपनी कम्युनिटी और यंगर जनरेशन्स में बांटा है। तो आज की इसी सेगमेंट को हम यही ख़त्म करते हैं। तो अगले हफ्ते कुछ और ऐसी ही इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल कहानी के साथ, पर्सनालिटी के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए सुनते रहिएगा आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9। दिस इज आरजे रफली साइनिंग ऑफ।

0: जागते रहो जागते रहो,
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
1: अफवाहों से
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
1: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
0: सजग भारत,
1: जागरूक भारत,
0: सशक्त भारत।
1: सुनिए सजग भारत
0: हर सोमवार सुबह 11 बजे सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर।
1: सजग भारत, जागरूक बनिए
0: सजग रहिए।

छा गई, तेरे द्वार पे तेरी मौत आ गई है।

0: जागते रहो जागते रहो,
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
1: अफवाहों से
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
1: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
0: सजग भारत,
1: जागरूक भारत,
0: सशक्त भारत।
1: सुनिए सजग भारत
0: हर सोमवार सुबह 11 बजे सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
1: जागरूक बनिए
0: सजग रहिए।

आसमान की बुलंदियों पर जब तिरंगा लहराता है तब दिखता है भारतीय वायुसेना का शौर्य पराक्रम। 8 अक्टूबर 1932 से लेकर आज तक इंडियन एयरफोर्स ने हर चैलेंज, हर चुनौती का साहस और वीरता से सामना किया है, कभी युद्ध भूमि में तो कभी आपदा राहत में। देश सेलिब्रेट कर रहा है आज एयरफोर्स डे, इंडियन एयरफोर्स डे 2026, द डे ऑफ प्राइड एंड ऑनर, जब हम सल्यूट करते हैं अपने वीर जांबाजों को जिनकी उड़ान ने भारत को सेफ एंड सिक्योर रखा है। नवास्पर्शम दीपतम टच द स्काई विद ग्लोरी।

0: आप सुन रहे हैं देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो। और आज का संदेश टू सोल्जर्स है एयरफोर्स डे स्पेशल। आप हैं शाहिद के साथ और हमारे साथ हैं वायुसेना मेडल से सम्मानित सीनियर फेलो एट द मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स हेलीकॉप्टर पायलट ग्रुप कैप्टन डॉक्टर राजीव कुमार नारंग। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो संदेश टू सोल्जर्स में आज के इस खास दिन।
1: धन्यवाद, मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आम लोगों से अपनी भारतीय वायुसेना के दिवस के मौके पर आप लोगों से मिल पाया और अपने लोगों से भारत की वायुसेना के एक पुराने सैनिक होने के नाते
0: जी
1: आप लोगों से बात करके कुछ अपने विचार शेयर कर पाऊँ, कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँ और कुछ फ्यूचर भारत को कैसे एरोस्पेस पावर बनना है
0: जी
1: उस पर बात कर पाऊँ।
0: सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला और आपकी जो ये कीमती बातें हैं वो हम आज के अपने शो में करेंगे। और हम चाहेंगे अपने लिसनर से हमेशा की तरह से कि आप हमें मैसेज करें। हमारा नंबर है व्हाट्सएप नंबर 9868107070। मोबाइल ऐप पर आप हमें सुन रहे हैं, न्यूज ऑन AIR हमारी मोबाइल ऐप है जिस पर आप हमें लाइव सुन रहे हैं। हमारे साथ हैं आज के हमारे बहुत ही खास मेहमान आज के बहुत ही खास दिन एयरफोर्स डे स्पेशल शो में ग्रुप कैप्टन डॉक्टर राजीव कुमार नारंग। सर, आज एयरफोर्स डे है, एक बेहद ही स्पेशल दिन, न सिर्फ भारतीय वायुसेना के लिए, उसके पराक्रम शौर्य के लिए, बल्कि साथ ही साथ पूरे देश के लिए और देशवासियों के लिए। तो आप सर, आज के दिन को किस तरह से देखते हैं?
1: देखिए, भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर 1932 में कराची, जो आजकल पाकिस्तान में है, एक दिग रोड एयरफोर्स स्टेशन था जहां पर सिर्फ केवल 4 वापिती जहाजों से बनी थी, जो छोटे से 2 बायप्लेन होते थे
0: जी।
1: और उसको देख के आपने ऑफ सिंदूर में देखा कैसे भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को एक अपने अच्छा करारा जवाब दिया जब उन्होंने हमारे यहाँ पर एक टेररिस्ट अटैक किया
0: जी।
1: और फिर भारतीय वायुसेना ने अपना संयम दिखाते हुए सिर्फ टेररिस्ट को ही अटैक किया और कोई अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं किया।
0: बिल्कुल।
1: तो ये 94 भारतीय वायुसेना की एनिवर्सरी पर मैं भारतीय वायुसेना के अधिकारी
0: जी,
1: एयरमैन, नॉन कॉम्बेटेंट, सिविलियंस, संगनीज और वो सब लोग जो भारतीय वायुसेना से जुड़े हैं उनको मैं अपनी दिल से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जैसे भारतीय वायु सेना अपने देश की सीमाओं वायु की रक्षा करती रही है, वैसे ही आप लोग करते रहिए और हम चाहे वर्दी छोड़ चुके हैं, हम आपके साथ हैं और हमें आप पे गर्व है। आपको हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही काम करते रहें। और इस साल जो है भारतीय वायुसेना की परेड हिंडन एयरफोर्स स्टेशन में हुई थी
0: जी।
1: ये 3 वर्षों के बाद थी कि हिंडन में दोबारा हुई और थीम दिया गया था स्पेशल, जिसे हमने दिया गया इनफॉलिबल, जिसका मतलब है अचूक
0: जी।
1: और ये अचूक हमने दिखाया कि हम कितने अचूक थे जब हमने अटैक किया पिछले मई 2025 को। इम्परवेश अभेद, मतलब जिसे कोई रोक नहीं पाई दुनिया की, कोई डिफेंस नहीं रोक पाई
0: जी, जी।
1: और प्रिसाइज, आपने देखा होगा कि कैसे हमने छोटी सी जगह पर जाके बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पे अटैक किया। तो भारतीय वायुसेना का ये जो थीम है ये इंडिकेट करता है कि हम सीरियस हैं। और मैं ऑल भारतीय वायुसेना के जो हमारे एक ही जो परमवीर चक्र विजेता है फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जी सिंह सेखो, उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करना चाहूंगा क्योंकि उनके जैसे कई लोगों के शौर्य की वजह से हमारा भारत सुरक्षित है और हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं।
0: बिल्कुल सर, आपने बहुत सर कीमती और बहुत ही खूबसूरत बात कही और जाहिर है देशभक्ति की जो भावना है वो हर देशवासी में है। और जिस तरीके से आपने कहा कि वर्दी आपने भले ही छोड़ दी या रिटायर हो गया, लेकिन उसके बावजूद जो देशभक्ति की भावना है और जो अपनी एयरफोर्स के लिए जो आपका डेडिकेशन है और जो कंट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल एकदम अनएक्सप्लेनेबल है और बहुत ही स्पेशल है। आप सुन रहे हैं 102.6 देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स आज का डेडिकेटेड है, एयरफोर्स डे स्पेशल है आज का। और आज के हमारे बहुत ही स्पेशल मेहमान हैं ग्रुप कैप्टन डॉक्टर राजीव कुमार नारंग। देशभक्ति की भावना हर देशवासी में मौजूद है। हम आते हैं लौटकर, आप हमें मैसेज करें 9868107070 हमारा है नंबर।

0: संदेश टू सोल्जर्स का आज का खास प्रोग्राम आप सुन रहे हैं शायद के साथ 102.6 देश का नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर. आज है एयरफोर्स डे और एयरफोर्स डे स्पेशल शो में आज हमारे मेहमान हैं ग्रुप कैप्टन डॉक्टर राजीव कुमार नारंग जी. सर एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा हमारे आज के स्पेशल शो में. सर हमारे पास ऑनरेबल चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह का मैसेज है. हम चाहेंगे कि हम सब हमारे लिसनर्स को भी उनका ये मैसेज सुनाया जाए.
1: This is Delhi. Please stand by for our next program. This is Akashwani. On the eve of the 94th anniversary of Indian Air Force, we now bring you a message by the Chief of Air Staff, Air Chief Marshal Amarpreet Singh, Param Vishist Seva Medal, Ati Vishist Seva Medal.
2: भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर प्रस्तुत है भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह परम विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल का संदेश.
3: नमस्कार. भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर सारे वायु योद्धाओं की ओर से मैं सभी देशवासियों को नमन करता हूँ. वायुसेना दिवस हमारी उस गौरवमय यात्रा का उत्सव है जो अटूट निष्ठा, अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान की नींव पर रची गई है. सन 1932 में मात्र 4 वापिती विमानों से उड़ान भरने वाली हमारी वायुसेना आज एक अत्यंत सक्षम, नेटवर्क सेंट्रिक और बहुआयामी फोर्स बन चुकी है. आज की दुनिया अस्थिर, अनिश्चित और जटिल दौर से गुजर रही है. हितों और परिस्थितियों के लगातार बदलने के इस माहौल में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में नए संघर्ष उभर रहे हैं. इन संघर्षों में हमने देखा है कि वायु शक्ति राष्ट्र के हितों की रक्षा करने का एक प्रमुख साधन है. देश की वायु शक्ति का प्राथमिक माध्यम होने के नाते भारतीय वायुसेना सतर्कता और दृढ़ संकल्प के साथ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए

0: सदैव तत्पर है. लास्ट ईयर ऑपरेशन सिंदूर रीअफर्म द पिवटल पावर ऑफ इंटीग्रेटेड एयर ऑपरेशन, डेमोन्स्ट्रेटिंग आर केपेबिलिटी एंड कैपेसिटी टू डिफेंड आर सोवरेनिटी. थ्रू मेजर माइल स्टोन्स दिस ईयर, इंक्लूडिंग एक्सरसाइज वायुशक्ति, वेरियस बायोलेट्रल एक्सरसाइजेस, ड्रोनाथॉन एंड द ऑनगोइंग हिस्टोरिक मल्टीलेट्रल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति, वी आर एक्टिवली टेस्टिंग आर कॉम्बैट रेडीनेस एंड रैपिडली एब्जॉर्बिंग निश टेक्नोलॉजीज इन टू आर ऑपरेशनल प्लान्स. अपनी मारक क्षमता के अलावा भारतीय वायुसेना ने संकट के समय में हमेशा आगे बढ़कर देश और मानवता की सेवा की है. चाहे देश के विभिन्न प्रदेशों में आई भयंकर बाढ़ के दौरान नागरिकों की सहायता हो या जंगलों में लगी भीषण आग पर काबू पाना हो, हमारे वायु योद्धाओं ने हमेशा कौशल और साहस का परिचय दिया है. हमारी यह प्रतिबद्धता हमारी सीमाओं तक सीमित नहीं है. नेपाल और युगांडा से लेकर वेनेजुएला, फिलीपींस, मेडागास्कर, थाईलैंड, क्यूबा और जमैका तक हमारी वायुसेना ने HADR मिशनों के माध्यम से सेवा के इसी संकल्प को निरंतर आगे बढ़ाया है, जो सेवा परमो धर्म एवं वसुधैव कुटुंबकम की सच्ची भावनाओं को दर्शाता है. आत्मनिर्भरता हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत है. लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अंकुर ट्रेनर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, अस्त्र आकाश तथा ब्रह्मोस जैसी स्वदेशी प्रणालियां इसी संकल्प का प्रमाण है. आत्मनिर्भरता की इस नींव पर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को तेजी से अपनाना भारतीय वायुसेना की सर्वोच्च प्राथमिकता बन चुका है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑलरेडी फाइंडिंग इट्स वे इनटू एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर फंक्शनिंग. आवर विजन इज टू बिल्ड एन AI ऑगमेंटेड फोर्स वेयर टेक्नोलॉजी सपोर्ट्स अस बट ह्यूमंस रिमेन इन कमांड. आवर रोल्स एंड टास्क नेचुरली टेक अस बियॉन्ड द कन्फाइंस ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर एज स्पेस इज अ नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ द एयर डोमेन. आवर डीपनिंग पार्टनरशिप विद ISRO, इंक्लूडिंग आवर कॉन्ट्रीब्यूशन टू गगनयान मिशन, रिफ्लेक्ट्स दिस कमिटमेंट. These capabilities form an integral part of our vision for 2047. Technology is only an enabler. The foundation of decisive victory has always been in the unity of purpose. Modern wars are not won by the strength of a single service, but through the combined strength of the entire nation. For Indian Air Force, jointness is the only way forward. Our endeavor is to ensure that the reach, speed, and precision of air power are fully harnessed so that its effects are felt across every dimension of the battle space. इस अवसर पर मैं अपने आदरणीय एयर वेटरन्स को नमन करता हूँ. आपकी दूरदृष्टि, समर्पण और मार्गदर्शी नेतृत्व ने ही इस सशक्त भारतीय वायुसेना की नींव रखी है, जो आज राष्ट्र की सुरक्षा के लिए पूरी दृढ़ता के साथ खड़ी है. साथ ही मैं अमर शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जिन्होंने कर्तव्य के मार्ग पर अपनी प्राणों की आहुति देकर तिरंगे का मान रखा. आई ऑल्सो टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्नॉलेज दैट थ्रू एवरी चैलेंज द अनवेवरिंग सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट ऑफ आर फेलो सिटीजन्स हैव बीन अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर द इंडियन एयरफोर्स. देश की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और आप सभी का आशीर्वाद हमारी सबसे बड़ी ताकत है. अंत में हम समस्त वायु योद्धा भारतीय वायुसेना अचूक अभेद एवं सटीक की अवधारणा का स्मरण करते हुए यह संकल्प लेते हैं कि राष्ट्र की रक्षा, उसकी संप्रभुता और अखंडता के लिए हम सदैव समर्पित रहेंगे तथा अपने आदर्श वाक्य नभ स्पृशम दीप्तम पर अडिग रहेंगे. जय हिंद.
1: ऑन द ईव ऑफ द 94th एनिवर्सरी ऑफ इंडियन एयरफोर्स
2: 102.6 यह देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स. आज का हमारा स्पेशल शो एयरफोर्स डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज, और हमारे साथ हैं वायुसेना मेडल से सम्मानित सीनियर फेलो एट द मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स हेलीकॉप्टर पायलट ग्रुप कैप्टन डॉक्टर राजीव कुमार नारंग जी. सर बहुत बहुत एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा आप आज के स्पेशल शो में. और सर इंडियन एयरफोर्स का मैं आपसे पूछूं, एक कोई स्पेशल सॉन्ग भी है
3: जी,
2: तो वो क्या कुछ जोश से भर देता है आपको, पुराने दिनों की याद दिलाता है?
3: भारतीय वायुसेना का एक अपना सॉन्ग है जिसे वायुसेना सॉन्ग कहते हैं
2: जी,
3: और
2: जी,
3: मैं
2: जी.
3: सुनना चाहूंगा क्योंकि ये हमारी लाइफ से एसोसिएटेड है.
2: बिल्कुल सर,
3: यदि आप सुना पाए तो बहुत
2: बिल्कुल सर जरूर. और हम यहाँ पर एयरफोर्स डे का ये

0: सर कैसा महसूस कर रहे हैं इस सॉन्ग सुन करके?
1: मुझे लग रहा है कि ये भारतीय वायु सैनिकों को
0: जी
1: उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी कर्तव्य निष्ठा और उनका जो कमिटमेंट है भारत के प्रति,
0: जी
1: उसकी याद दिलाता है, उसको सेलिब्रेट करता है और बताता है कि कैसे भारतीय वायु सैनिक किसी भी स्थिति के लिए भारत के साथ खड़ा है, भारत के नागरिकों के साथ खड़ा है, भारत की सुरक्षा में खड़ा है और इस देश को किसी की नजर ना लगे उसे बचाने के लिए तैयार खड़ा है।
0: बिल्कुल
1: ये
0: सर,
1: भारतीय वायुसेना की अंदर से आई हुई आवाज है जो शायद ये कुछ शब्द कहते हैं। और मैं आपको कहना चाहूंगा,
0: जी
1: अभी आज जो हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ, क्योंकि वो हमारे ही चीफ ऑफ एयर स्टाफ
0: बिल्कुल सर,
1: हैं, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, उन्होंने कुछ बात कही कि हमारी वायुसेना ड्रोन से लेके हाइपरसोनिक सिस्टम्स के लिए तैयार है,
0: बिल्कुल
1: जमीन से लेके स्पेस तक के लिए तैयार है। उन्होंने जॉइंट प्लानिंग की बात की कि भारतीय वायुसेना हमेशा से ही जॉइंट प्लानिंग के लिए हमेशा तत्पर रही है
0: बिल्कुल
1: और हमने ऑप सिंदूर में दिखाया कैसे जॉइंट प्लानिंग की वजह से हम दुश्मन के हर मंसूबे को धराशायी कर पाए। उन्होंने लीडरशिप की बात की, एक लीडर है जो बहुत ही एडवर्स सिचुएशंस को भी अपने फायदे के लिए, अपने सक्सेस को ट्रांसफॉर्म करता है।
0: जी
1: उन्होंने एक दो बात कही कि देश की सुरक्षा हमारा धर्म है। उन्होंने याद कराया भारतीय वायु सैनिकों को कि ये कभी ना भूलें और उन्होंने नागरिकों को धन्यवाद देते हुए कहा कि नागरिकों का सहयोग हमारी ताकत है। कैसे
0: बिल्कुल
1: एक आम आदमी भारतीय वायुसेना की ताकत है, उन्होंने
0: जी
1: एक्सप्रेस किया। और एक जो इंपॉर्टेंट इशू उन्होंने कहा, आत्मनिर्भरता। जब वो बात कर रहे थे एएलएच, अंकुर,
0: जी
1: ट्रेनर, एलसीए, इन सब के पीछे मैं कुछ बहुत ही कुछ लोगों की बात बताना चाहूंगा
0: जरूर
1: जिन्होंने भारत को आत्मनिर्भरता के लिए कब से प्रयत्न कर रहे हैं। और आप इनमें एक हैं, डॉक्टर एस आर विल्लूरी, जो अमेरिका में अपना जॉब छोड़ के भारत में, जब इंडिपेंडेंट हुआ भारत में
0: जी
1: आए और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के एजेंसी के
0: जी
1: पहले डायरेक्टर बने और उन्होंने कई शुरुआत दी अपनी भारत में एयरक्राफ्ट डिजाइन को
0: अच्छा
1: शुरुआत में। फिर थे डॉक्टर वीएम घाटगे। आप देखिए 1947 में हम इंडिपेंडेंट हुए
0: जी
1: और 4 साल में उन्होंने भारत का पहला ट्रेनर बनाया जिसको जिसका नाम था हिंदुस्तान ट्रेनर 2। 4 साल में कोई
0: बिल्कुल,
1: गुलाम देश अपना खुद
0: अपना खुद का फाइटर
1: जहाज
0: जेट
1: ट्रेनर बनाए,
0: ट्रेनर बनाए। जी
1: और जबकि वो उसके पास कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: तो ये बहुत ही हमारे जो है भारतीय
0: जो
1: वायुसेना की
0: कंट्रीब्यूशन है।
1: स्ट्रेंथ है।
0: जी बिल्कुल
1: ऐसे हमारे एक एयर वाइस मार्शल हरजिंदर सिंह है जिनकी बातें मैं बाद में बताऊंगा,
0: जी
1: और कुछ एक रुस्तम भी दमानिया है जिनके नाम पे हमारे रुस्तम ड्रोन है। हमारे
0: बिल्कुल
1: कुछ टेस्ट पायलट्स हैं जैसे सुरंजन दास, विंग कमांडर अशोक और बहुत

0: सारे भारतीय वायुसेना के टेस्ट पायलट हैं। और अगर मैं अब के जमाने की बात करूं तो आपका जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट
1: जी
0: है उसके जो जनक मैं कहना चाहूंगा वो है डॉक्टर कोटाहरी नारायण। वो अभी जीवित हैं और इतनी उम्र में अभी भी उतने ही जोश से भारतीय भारत की सेवा में लगे हुए हैं।
1: बहुत खूब सर
0: तो बहुत हमारे
1: जी
0: भारतीय वायुसेना को सक्षम बनाने के लिए जो वीर हैं,
1: जी
0: जो
1: जिन्होंने अपना
0: भारत ने
1: कंट्रीब्यूशन दिया
0: कंट्रीब्यूशन दिया
1: जी
0: है, शायद वो भी एक ऐसे हैं जिनको हमें इस दिन याद रखना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर टेक्नोलॉजी का है
1: बिल्कुल
0: और फ्यूचर आत्मनिर्भरता का है, फ्यूचर अपने प्रोजेक्ट्स को वर्ल्ड लेवल की टेक्नोलॉजी पर ले जाने का है, तो हमारे
1: बिल्कुल
0: साइंटिस्ट का है, हमारे इंजीनियर्स का है, हमारे इनोवेटर्स का है, हमारे स्टार्टअप्स का है, हमारे एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का है,
1: जी
0: और हमारी भारतीय इंडस्ट्री का है जो भारत में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट करे और वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी बनाए कि हम सिर्फ अपने देश की रक्षा ना कर पाएं बल्कि एक्सपोर्ट कर पाएं, हमारी इकोनॉमी को अच्छा बना पाएं और भारत को एक विकसित राष्ट्र बना पाएं।
1: सर, जैसे आपने बताया, एक तो इंडियन एयरफोर्स ने जिस तरीके से एक आत्मनिर्भर भारत में इतना जबरदस्त कंट्रीब्यूशन दिया है, जैसे आपने बताया कि हमारी प्रीवियसली जब से देश आजाद हुआ उसके बाद से ही कितने लोगों ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिए सर, और क्या पर्सनैलिटीज हैं जिनको आप मेंशन करना चाहेंगे, और इंडियन एयरफोर्स का उस आत्मनिर्भर भारत में भी जो योगदान रहा वो भी बताइए।
0: देखिए, भारतीय वायुसेना ने अगर आप देखें जो पहला जो एक दो टू सीट एयरक्राफ्ट बनाया था वो था 1958 में, जिसको कानपुर वन गया कहते हैं,
1: अच्छा
0: ये एचएल ने नहीं बनाया था,
1: ठीक है
0: ये भारतीय वायुसेना के इंजीनियर्स ने कानपुर में बनाया, इसलिए इसका नाम कानपुर वन बना।
1: ओके
0: फिर इन्होंने फोर सीटर बनाया जिसका नाम था कानपुर टू, हालांकि ये लॉन्ग डिस्टेंस नहीं चला
1: जी
0: लेकिन भारतीय वायुसेना के इंजीनियर्स बहुत कैपेबल थे।
1: जी बिल्कुल बना पाए वो।
0: हाँ, और मैं एक और बताना चाहूंगा कि एक एवरो जहाज था जिसकी हमने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी लिया 1959-1960 के बाद,
1: ओके
0: और उस वक्त जो था हमने पूरी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी बनाई और 2 साल में उसको हमने पहला जहाज भारत में बनाया। ये जो इनिशिएटिव था,
1: जी
0: ये एयर वाइस मार्शल हरजिंदर सिंह जो उस वक्त इंचार्ज थे मेंटेनेंस कमांड के, उन्होंने एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग डिपो बनाया कानपुर में, जो उस वक्त के भारतीय वायुसेना चीफ सुब्रतो मुखर्जी उन्होंने इनॉग्रेट किया, और फिर हमने वो जो बाद में जो फाइटर बनाने के काम आया
1: जी
0: और एयरक्राफ्ट हमने बनाए। तो भारतीय वायुसेना ने आपकी आत्मनिर्भरता में बहुत अच्छा रोल प्ले किया। और अगर मैं रीसेंट इनिशिएटिव देखूं
1: जी
0: तो 8 अक्टूबर 2018 को भारतीय वायुसेना ने एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम था मेहर बाबा यूएस स्वॉर्म कॉम्पिटिशन। यूएस इज अनमैन्ड एरियल सिस्टम, या जिसको आजकल हम
1: जी
0: ड्रोन भी
1: ड्रोन
0: कहते
1: कहते
0: आते
1: हैं
0: हैं,
1: जी जी जी
0: स्वॉर्म की तरह कैसे हम अपनी देश की ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट या डिजास्टर रिलीफ प्रोवाइड कर पाएं या
1: जी
0: अपने देश की सुरक्षा में उसको इस्तेमाल कर पाएं, ये जो कैपेबिलिटी है भारतीय वायुसेना ने अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया। तो भारतीय वायुसेना बहुत कुछ करती आई है
1: बिल्कुल।
0: और फ्यूचर में हमें बहुत स्कोप है आगे करने का।
1: और सर ये भी जैसे आपने बताया कि हमारा जो आजाद भारत का पहला जहाज, जैसे कि आपने बताया बताया
0: HD2
1: जी
0: 1991 में, 91 में,
1: 1991 में बनाया, और
0: चार साल
1: हमारा
0: बाद
1: 4 साल बाद
0: जी,
1: 1951 में
0: उन्नीस सौ
1: जी
0: इक्यावन में सॉरी उन्नीस सौ
1: जी
0: इक्यावन 1947 में इंडिपेंडेंट हुए और
1: जी
0: 4 साल
1: चार साल
0: में
1: के अंदर अंदर
0: हमने
1: हमने
0: एक टू
1: अपना पहला
0: सीटर
1: जहाज बना
0: ट्रेनर
1: लिया,
0: बना लिया,
1: ट्रेनर बना
0: और ये
1: लिया
0: बहुत सालों तक हम भारतीय वायुसेना की सेवा में रहा। मैंने
1: बिल्कुल।
0: इसको उड़ते हुए देखा 1990 के करीब,
1: तब तक उड़ता
0: तब
1: था
0: तक
1: ये,
0: उड़ रहा था,
1: बहुत बड़ी बात है,
0: 1950, इतने साल इसने
1: इतने
0: भारत की
1: साल भी
0: सेवा की।
1: सेवा की। और
0: तो बहुत हमारे कैपेबल्स है, हमारे
1: जी जी
0: इंजीनियर्स रहे
1: सर,
0: हैं।
1: यही इसके साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगा सर, जो एयरफोर्स का पहला जहाज वो कब बना?
0: एयरफोर्स का बना जो जो भारतीय वायुसेना ने डिजाइन किया था वो था
1: जी
0: कानपुर वन, जैसे मैंने बोला
1: ठीक है
0: 1958 में,
1: जी
0: और हालांकि बाद में हमारा रोल उस तरीके से नहीं था,
1: जी
0: लेकिन एयरफोर्स एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूटर था जब हम इंडिपेंडेंट हुए। टेक्नोलॉजी में, एविएशन टेक्नोलॉजी में हमने बहुत सारे जो ब्रिटेन और या अमेरिका के पुराने जहाज थे
1: जी
0: उनको कबाड़ खाने से ला के उसको ऑपरेशनल बनाया,
1: ओके
0: और उस वक्त जो था क्योंकि हमारे इंजीनियर्स जो थे फ्रंट एंड पे नहीं थे, हमारे इंजीनियर्स एक मेंटेनेंस और उन कामों में
1: अच्छा
0: थे, तो उस समय में एयरक्राफ्ट को साल्वेज यार्ड से निकाल के

0: उसको फ्लाइंग ऑपरेशनल बनाना, ये
1: जी
0: एक बहुत बड़ा रोल है।
1: बिल्कुल,
0: इनफैक्ट
1: बहुत बड़ा काम
0: अगर
1: था ये।
0: अगर आप हरजिंदर सिंह जी की स्टोरी सुने
1: जी
0: तो वो इंजीनियर थे, उन्होंने 33 वर्ष की उम्र में पायलट की ट्रेनिंग ली और पायलट लाइसेंस लिया
1: अच्छा,
0: उस वक्त। तो वो डिजाइन भी करते थे और उसको
1: पायलट
0: उड़ाते भी
1: उड़ाते
0: थे,
1: भी थे।
0: मतलब नॉट हार्ड टेस्टिंग जहाज, लेकिन वो पायलट थे, तो उन्हें डिजाइन और मेंटेनेंस की अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। ऐसे ही अगर आप रुस्तम भी दमानिया का समय पढ़ें, जो एक नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी में इंजीनियर थे,
1: जी
0: साइंटिस्ट थे, वो भी पायलट थे। वो अमेरिका में पायलट की ट्रेनिंग लेके आए और भारत में आके जब जहाज उड़ते थे तो वो डिजाइन के साथ साथ अपने इंजीनियर्स को बताते थे कि ये जहाज कैसे डिजाइन होना चाहिए, कैसे भारतीय पायलट्स की आवश्यकता है। तो हमारे बहुत एक रिच हिस्ट्री रही है,
1: बिल्कुल,
0: सिर्फ वॉर फाइटिंग में नहीं बल्कि अपने देश को सशक्त बनाने
1: सशक्त
0: में,
1: बनाने में,
0: एरोनॉटिक्स
1: बिल्कुल,
0: कैपेबिलिटी बनाने में,
1: और वो मेड इन इंडिया,
0: मेड इन
1: अपने ही
0: इंडिया,
1: लोगों ने बनाया
0: मेरे
1: था।
0: मेड इन इंडिया में। अगर आप
1: बिल्कुल
0: सुरंजन दास की बात करें तो जब हम अपना फर्स्ट फाइटर एयर का बना रहे थे
1: जी,
0: तो वो एक जर्मन साइंटिस्ट थे, तो जर्मन साइंटिस्ट बीच में चले गए तो
1: अच्छा
0: सुरंजन दास ने उनका काम टेक ओवर किया। तो टेस्ट पायलट होते हुए उन्होंने डिजाइन को अपने देश के एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए उसको
1: अच्छा
0: अगले लेवल पर ले जाने की प्रयत्न किया।
1: सर, जिस तरीके से आपसे हम बात कर रहे हैं, इतनी सारी जानकारियां हमें मिल रही हैं, और जैसे आपने बताया कि पहला एयरक्राफ्ट हमारा कब बन गया था, ये हमारे लिए बड़ी ही फख्र की बात है, गर्व की बात है, और ये नॉलेज में हमारी एक तरह से बढ़ोतरी हो रही है। सर, यहाँ पर मैं आगे बढ़ते बढ़ते आपसे बहुत सारे सवाल करने हैं और आपसे बहुत सारी बातें करूं, लेकिन इससे पहले कुछ मैसेजेस जो आ चुके हैं मैं उनको जरूर आपको सुनाना चाहूंगा। हितेंद्र दास का असम से है मैसेज, गुड आफ्टरनून कह रहे हैं सर आपको। और उसके बाद ये मैसेज है, शाही सर जी और ग्रुप कैप्टन राजीव सर, आपको मेरा सलाम। आज रेडियो पर आपका इंटरव्यू सुन रहे हैं, बहुत गर्व हो रहा है। आज आप हम आप हो तभी हम चैन से रह सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। ये है सर चंपावत टनकपुर उत्तराखंड ग्राम गेंडाखाली नंबर 1, अनिल कुमार का सर ये मैसेज आपके लिए।
0: देखिए, हम हमारे चीफ ने बोला है कि नागरिकों का सहयोग
1: जी
0: हमारी ताकत है, तो आप
1: बिल्कुल
0: हमारी
1: सर,
0: ताकत हैं, हमारे जो अभी करंट जनरेशन के योद्धा हैं, वायु योद्धा हैं, तो आप उनकी ताकत हैं। आप ऐसे ही
1: बिल्कुल
0: उनका सहयोग देते रहें, अश्योर्ड रहिए कि वो आपकी वायु की पूरी सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे और हमें
1: बिल्कुल
0: भी उन पर गर्व है।
1: बिल्कुल। और यह है सर यशवंत आडमुठे धाराशिव महाराष्ट्र से, नमस्कार, जय हिंद सर, जय भारत कह रहे हैं आपसे। और ये मैसेज है मंसूर अली खान, आप सबको नमस्कार, वायुसेना को सलाम कर रहे हैं सर। और ये एक बहुत बड़ी कविता लिखकर भेजी है, ये बहुत बड़ी कविता है यश शिंदे की मुंबई से, और मुझे लगता है कि परिंदों से कह दो कि हम अपनी उड़ान और ऊंची कर लें, क्योंकि आसमान में अब बाजों का पहरा है। ये भारतीय वायुसेना के जाबाज सिपाही हैं, इनका हौसला समंदर से भी गहरा है, जिनकी हुकूमत से कांपता नीले अंबर का सीना है, देश के उन रखवालों का शान से ही तो जीना है, जिन्होंने सीखा सिर्फ वतन के लिए मरना और जीना है, नीले गगन की ओट में रहकर जो फर्ज निभाते हैं, वो तूफानों के रुख को भी मोड़ कर आते हैं। भारतीय वायुसेना के उन वीर सपूतों को सलाम जो आसमान में भारत का मान बढ़ाते हैं, वायुसेना के शेरों को शत शत नमन। हमारा वायुसेना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई सर आपके लिए। ये यश शिंदे मुंबई से मैसेज कर रहे हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और सर, ये एम्प्रॉड ऑफ ऑल यू सर, लव लाइफ IAF, जय हिंद, दीपांशु भटिंडा से, एयरफोर्स इज द बेस्टेस्ट इन द यूनिवर्स, जय हिंद, दीपांशु का सर ये मैसेज है। और ये मैसेज है रजनीकांत रघुनाथ पाटिल, महाराष्ट्र डहाणू वार्ड 1 से, जय हिंद सर जी, आपको ये कह रहे हैं। और ये है सर, जय हिंद टू टुडेज रिस्पेक्टेड गेस्ट सर, एंड गुड आफ्टरनून आरजे सर, थैंक यू, माय हार्डेस्ट लव एंड रिस्पेक्ट टू ऑल आवर बिलवड इंडियन आर्मी फॉर दी सेल्फलेस सर्विस एंड इंडियन एयरफोर्स टुवर्ड्स द नेशन, आई बो माय हैट टू देम, माय सेल्फ शंकर लोथ फ्रॉम ककरोला द्वारका सेक्टर 15 सर दिल्ली से ये कर रहे हैं मैसेज, भारत माता की जय, जय वंदे मातरम। और ये सारे मैसेज लगातार हमारे पास सर आ रहे हैं, हम बीच बीच में कोशिश करेंगे इनको लेने की, लेकिन सर मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, आपने अपने करियर के दौरान बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे होंगे, क्योंकि आपका काम ही ऊंचाई पर जाना और फिर नीचे आना, तो उन उतार चढ़ाव में कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको आज भी याद तो आता हो लेकिन आपको डराता भी हो, आप सिहर भी जाते हो, कुछ ऐसा?
0: नहीं, देखिए, मेरे एक सीनियर कहते थे कि डर
1: जी
0: लगता है। मैंने कहा यस सर, कहते फिर तुम जियोगे।
1: अरे वाह,
0: डरना चाहिए लेकिन उस डर को ओवरकम करना भी आना चाहिए।
1: बिल्कुल
0: अगर आप डर को नहीं ओवरकम कर पाते तो हम उड़

0: अगर
1: यानी कि डर
0: हम,
1: भी जरूरी है
0: हाँ, क्योंकि वो सैनिटी रखता है आपको
1: जी।
0: सोचने की, ठीक दिशा, ठीक डिसीजन लेने की एक ज्ञान देता है आपको, बार बार याद कराता है कि किसी भी चीज को ग्रांटेड नहीं लेना।
1: एग्जैक्टली
0: तो मुझे लगता
1: बहुत सही
0: है कि
1: बात।
0: बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस थी, हम जहां पर ऐसी सिचुएशंस में थे कि लगता नहीं था कि निकल पाएंगे,
1: जी
0: लेकिन उस वक्त अपने माइंड को कूल रखना और ठीक डिसीजन लेना। अपनी टीम, देखिए भारतीय वायुसेना में मैं हेलीकॉप्टर पायलट हूँ, दो
1: जी
0: पायलट होते थे
1: जी
0: हमारे, टेक्नीशियंस होते थे, तो एक टीम थी हमारा। मैं तो कहता हूँ जो हमारा एनसी जो सुबह खाना लाता था या पानी
1: जी
0: लाता था
1: बिल्कुल
0: वो भी हमारी टीम का मेंबर
1: मेंबर
0: था,
1: है बिल्कुल
0: और हमारी वाइफ जो सुबह पता नहीं 4 बजे बेचारे उठती थी
1: बिल्कुल
0: या कब उठती थी,
1: जी
0: हमारे पूरे जो वायुसेना की टीम थी,
1: जी
0: उनकी फैमिली, उनके जो कमिटमेंट, उनके जो
1: बिल्कुल
0: सेक्रीफाइस हैं, तो बहुत सारी सिचुएशंस होती थी। हमारा दिल करता था कई बार कि हम घर जाएं, लेकिन नहीं जा पाते थे। तो मुझे लगता है ये एक नहीं, बहुत सारी परेशानियां थी, लेकिन वो अपनी देश की ड्यूटी से बड़ी नहीं थी।
1: नहीं थी बेशक सर। यही डेडिकेशन जो हम देखते हैं अपने आर्म फोर्सेस के, हमारे सोल्जर्स में, हमारे सिपाही, हमारे सैनिकों में, वो जज्बा, वो देशभक्ति से, मतलब देशवासियों को भी पूरा देशभक्ति से भर देता है वो। सर एक इंसिडेंट आपका मैं
0: जी
1: आपसे उस पर पूछना चाहूंगा। अगस्त 1998,
0: जी
1: 18,000 फीट की ऊंचाई पर
0: जी
1: आप फ्लाई कर रहे हैं
0: जी
1: सर,
0: जी
1: ऐसा क्या हुआ कि उस दिन जिंदगी बदल गई और आज आप हमारे सामने बैठे हैं?
0: जी वो एक ऐसा दिन था जिसमें बहुत अच्छा सा मौसम था,
1: जी
0: और हम नॉर्मल, देखिए मैं नॉर्थ सेक्टर में था,
1: जी
0: ग्लेशियर मतलब ले सेक्टर में अगर आप बोलिए, और हम जो है सब सेक्टर नॉर्थ में दौलत बेग ओल्डी में गए थे।
1: अच्छा
0: वहाँ पर हमने अपना जो भी अपना ऑपरेशन था किया,
1: जी
0: वापस आ रहे थे, और मेरे साथ मेरे को पायलट थे फ्लाइंग ऑफिसर नितिन वेल्डे, हम दोनों फ्लाइंग करके अपना ऑपरेशन करके वापस आ रहे थे। हमारे साथ एक पैसेंजर भी थे, और जब हम वापस आ रहे थे तो एक प्लेस है सासेरला,
1: ओके
0: सासेर ला मतलब पास कहते हैं, तो उसको हम
1: ओके
0: जैसे ही क्रॉस किया तो हमारे इंजन फेलियर हो गया।
1: ओह
0: और देखिए हेलीकॉप्टर में जब इंजन फेल होता है तो ये
1: जी
0: ग्लाइड नहीं करता, नीचे जाता बहुत तेजी से,
1: ओके
0: तो जब बहुत तेजी से नीचे जाता है तो मैं कहूंगा ये मेरे को पायलट की सूझबूझ थी कि मैं जहाज उड़ा रहा था और वो देख के मुझे बता रहा था कि किस तरफ जाना है,
1: अच्छा,
0: और देखिए
1: या आपका उनका कोऑर्डिनेशन था
0: कोऑर्डिनेशन था। और
1: जी।
0: देखिए हम जो पायलट हैं, हमें इंजन की आवाज की आदत है, उस दिन साइलेंस थी,
1: अच्छा
0: तो वो बहुत डेडली साइलेंस थी। शायद दिमाग में बहुत सारी चीजें घूमी होंगी जो मैं अभी याद नहीं कर पाता हूं,
1: जी
0: बट उस वक्त मुझे याद था कि काफी कुछ दिमाग से निकला था। कुछ सेकंड्स का ये जर्नी थी, हमारा जहाज बहुत तेजी से जमीन की तरफ जा रहा था, 18,000 से करीब, जब मैं मुझे लगा कि मैं जमीन पे जो नीचे जो 11,000 फुट पे थी
1: जी
0: वहां नहीं पहुंच पाऊंगा, तो मैंने कोपायलट से बताया कि लैंडिंग की जगह बताओ, तो
1: अच्छा
0: उन्होंने मुझे बोला दाहिनी तरफ को एक जगह थी, मैं जिस तरफ जा रहा था, तो उन्होंने जैसे ही बोला मैंने उस तरफ देखा, एक ही पॉइंट था, आगे पहाड़ था,
1: अच्छा
0: तो हमने फ्लेयर किया। और हेलीकॉप्टर में क्या होता है, आपके पास एक ही चांस होता है, जब आप फ्लेयर करते हो आप
1: जी
0: जहाज में पीछे करते हो, नीचे से जो हवा आ रही होती है,
1: जी
0: जैसे ही आप डिस्क को टिल्ट करते हो
1: जी
0: तो आपके पास एक ही मौका होता है, या तो आप बच गए या नहीं बचे,
1: अच्छा, दूसरा कोई चांस
0: दूसरा
1: नहीं
0: वो चांस नहीं। तो वो जो था आई थिंक बेस्ट ऑटो रोटेशन लैंडिंग मैंने अपनी लाइफ की थी, जिसने बचाया। मेरे जो टीचर्स थे, मेरे जो
1: जी
0: इंस्ट्रक्टर थे,
1: जी
0: जिन्होंने हमें डांट डांट के प्रिसीजन सिखाया, वो इंजन आरपीएम मेंटेन करना सिखाया और फोकस करना सिखाया, और जो ले में जो मेरे जूनियर और मेरे पियर्स और सीनियर्स थे, उन्होंने बताया कि कैसे आपको
1: इस सिचुएशन
0: आरपीएम
1: में
0: में हैंडल करना है, तो
1: जी
0: मुझे लगता है वो पूरी ज्ञान जो था वो एक सेकंड में जो बुआ,
1: एक सेकंड में
0: उसने हमारी लाइफ को बचा दिया। आज मेरी जो है ये
1: जी
0: दूसरी लाइफ है, मेरा जो को पायलट है,
1: जी
0: मेरे जो बाकी मित्र हैं जिन्होंने हमें रिकवर किया, हम
1: जी
0: दो जहाज थे, दूसरे जहाज ने आगे हमें रिकवर किया,
1: अच्छा
0: तो मुझे लगता है वो प्रोफेशनलिज्म, मेरे सीनियर्स, मेरे पियर्स, मेरे बाकी सारे
1: कोलिग्स आपके
0: वायुसेना
1: जी
0: के जो थे उसका एक निचोड़ था, और शायद जो अच्छी काम था या भगवान की मर्जी थी कि मुझे एक सेकेंड लाइफ मिलनी है।
1: बिल्कुल
0: अभी जमीन के से बहुत दूर होते हुए भी पहाड़ के बीच में
1: जी
0: 14,200 फीट 200 फीट पे जहाज को रिकवर किया, और जहाज टूट गया लेकिन हम में से किसी को चोट भी नहीं आई, हम तीनों
1: वो क्रैश हो
0: निकले
1: गया
0: क्रैश होके टूट गया। फिर हम तीनों बाहर निकले, हमें दूसरे जहाज ने रिकवर किया। तो शायद आई थिंक हमारी जो वायुसेना का प्रोफेशनलिज्म है कि कैसे आप सिचुएशन को डील करते हो,
1: जी
0: उसको कोई भी सीरियस, मतलब हम बहुत सीरियसली लेते हैं।
1: बिल्कुल
0: और मेरे जो इंस्ट्रक्टर्स ने जिस तरीके से सिखाया, जितनी प्रैक्टिस कराई, एक एवरेज बंदे को भी एक हाईली प्रोफेशनल बना देते हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय वायुसेना की मैं जितनी तारीफ करूं, कि
1: बिल्कुल
0: एक
1: सर
0: आम लड़के को उसको एक प्रोफेशनल पायलट बनाया। और फिर ये जो है, मैं 1998 की बात है,
1: जी
0: उसके बाद 2012-13 तक मैं, 2008-9-7-8 तक रेगुलर फ्लाइंग की।
1: अच्छा
0: तो उतनी देर उसके बावजूद चलते रहना, उसके बाद कितने
1: बिल्कुल
0: लोगों ने जो सिखाया होगा,
1: बिल्कुल
0: और लगभग मैंने 4,700 घंटे उड़ाए। तो मुझे लगता है कि भारतीय वायुसेना के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।
1: बिल्कुल सर, तो ये अपने आप में बहुत ही यादगार और बहुत ही कमाल की बात है कि जो आपने इंसिडेंट बताया कि वो सर्वाइवल जो था वो लाइफ चेंजिंग रहा। तो इसलिए सर हम आपकी इस बात के लिए तारीफ करते हैं कि आप उस मौके पर किस तरीके से आपने उसको हैंडल किया, उस सिचुएशन को आपने संभाला और सारे लोग बच गए और आज आप साक्षात हमारे साथ हैं और हम इस पर बात कर रहे हैं। तो हम ये कहें कि ये फ्लाइंग जो है वो अपने आप में बहुत एक्साइटिंग भी है लेकिन बहुत खतरनाक भी है। तो वो जो सर है ना कि हीर आसमानी, तो जब आसमान में उड़ते हैं तो फिर बस कुछ नजर नहीं आता, हम आसमान में होते
0: मेरे
1: हैं।
0: ख्याल खतरनाक तो नहीं कहूंगा। मुझे लगता है कि अगर आप, जब प्रोफेशनलिज्म आता है तो खतरनाक नहीं होता।
1: जी
0: आप उसको कैसे सिक्योर बनाते हैं, ये
1: बिल्कुल, और साथ में एंजॉय भी करते हैं,
0: एंजॉय तो करना, आई थिंक प्रोफेशनलिज्म में आप पूरा फोकस्ड होते हैं।
1: फोकस्ड होते हैं।
0: जी
1: हमारे साथ हैं ग्रुप कैप्टन डॉक्टर आर के नारंग। आप सुन रहे हैं आज का एयरफोर्स डे स्पेशल। मेरे साथ, मेरा नाम है शाहिद और ये है 102.6 नंबर 1 रेडियो, आपका अपना रेनबो, दिल से दिल तक।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो, आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं शाहिद के साथ। आज है एयरफोर्स डे और आज के हमारे खास मेहमान एयरफोर्स डे पर ग्रुप कैप्टन डॉक्टर राजीव कुमार नारंग। सर, हम अगर बात करें ड्रोन टेक्नोलॉजी की, ड्रोन्स जो है आजकल जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसका बड़ा ही इंटेग्रल पार्ट बन चुका है, तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? भारत कहाँ है? हम अपने ड्रोन्स भी डेवलप कर रहे हैं आजकल, हम टेक में भी काफी आगे जा चुके हैं, आप किस तरह से उसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे?
1: देखिए, ड्रोन्स भारत नहीं पूरे विश्व में
0: जी
1: वॉर फाइटिंग को भी बदल रहा है और आम नागरिक के लिए भी बहुत बड़ा चेंज ला रहा है।
0: जी
1: भारतीय प्रधानमंत्री ने बोला है कि भारत को हम एक ग्लोबल ड्रोन हब देखना चाहते हैं 2030 में। और मिलिट्री में अगर आप देखें, जितनी भी वॉर्स हुई हैं,
0: जी
1: आर्मेनिया अजरबैजान वॉर हुई, अगर आर्मेनिया ने तैयारी नहीं की तो वो वॉर फटाफट लूज कर गया, तो इग्नोर नहीं कर सकते। हालांकि ड्रोन अभी मैन्ड एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने की सिचुएशन में नहीं है,
0: नहीं है, लेकिन सर जिस तरीके से हम देख रहे हैं आजकल, तो ड्रोन से ही सब अब तो।
1: हाँ, सो ड्रोन एक सिग्निफिकेंट पार्ट बनने जा रहा है और इसमें जो है भारतीय जो स्टार्टअप्स हैं, इनोवेटर्स हैं और इवन पब्लिक सेक्टर एंटिटीज जैसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट जो है मिलिट्री ड्रोन्स बना रही हैं, नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरी बैंगलोर है वो बना रहे हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है जिसका एक कॉम्बैट एरियल टीमिंग सिस्टम प्रोग्राम है, घातक प्रोग्राम है हमारा जो है, आर्चर प्रोग्राम है
0: जी।
1: और जो स्टार्टअप्स जो हैं वो जो है हमारे एग्रीकल्चर के लिए बना रहे हैं।
0: हाँ, बिल्कुल,
1: एक स्वामित्व स्कीम है, ड्रोन दीदी स्कीम है, तो भारत में काफी इनिशिएटिव्स हो रहे हैं। लेकिन यहां मैं कॉशन देना चाहूंगा, अगर आप यूक्रेन वॉर में देखें जो क्रिटिकल ड्रोन इंपोर्टेड कंपोनेंट थे उसकी वजह से हंड्रेड्स ऑफ यूक्रेनियन की डेथ हो गई, वो चाइनीज DJI ड्रोन यूज कर रहे थे और उनके वाइस प्रीमियर ने पब्लिक में जाके एक्स पे वो उस पोस्ट को डाला। सिमिलरली अगर आप देखें पेजर और वॉकी टॉकी में जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं वो 3,000 हिजबुल्ला लड़ाके इंजर्ड हुए उसकी वजह से और 40 से 50 मारे गए। क्यों? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो थे वल्नरेबल थे। तो मुझे लगता है ड्रोन और काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी जब हम आत्मनिर्भरता जो कर रहे हैं तो हमें याद रखना पड़ेगा कि क्रिटिकल कंपोनेंट इंडिया में बने और हमारे जो इंडिजिनस प्रोग्राम है जैसे घातक है, आर्चर एनजी है, या आर्चर एनजी जो है मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस हमारी DRDO के लेबोरेटरी ADE बना रही है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स बना रही है कैट्स प्रोग्राम जिसे कॉम्बैट एरियल टीमिंग सिस्टम बना रही है, हमारे स्टार्टअप्स बना रहे हैं लॉयटरिंग ड्रोन्स बना रहे हैं, एक हमारी प्राइवेट कंपनी है जो स्वॉर्म ड्रोन बना रही है। तो भारत में इनोवेशन है, हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि क्रिटिकल कंपोनेंट वल्नरेबल ना हो, इंपोर्टेड इतने ना हो कि भारत की वल्नरेबिलिटी बन जाए,
0: हम सेफ सिक्योर भी रहें, प्लस ये कि हमारी टेक्नोलॉजी हम
1: आत्मनिर्भर बने,
0: हमारे मेड इन इंडिया हो सारे वो जो कंपोनेंट्स हमको इंपोर्ट करने पड़ते हैं वो हम खुद बनाएं ताकि हम हर तरह से टेक्निकली भी एडवांसमेंट पर जाएं, प्लस सेफ और सिक्योर भी।
1: और हमारा जो है ना, जो जिसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी
0: जी,
1: जो कोर डिजाइन है वो हमारा
0: अपना हो,
1: हमारे जो वल्नरेबिलिटीज जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो है जिसकी वजह से ये अटैक हुए वो सब भारतीय बने, धीरे धीरे एक सिस्टमेटिक अप्रोच से करें तो मुझे लगता है भारत में बहुत पोटेंशियल है। मैं बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहना चाहूंगा कि भारतीय स्टार्टअप्स, हमारी प्राइवेट कंपनी, इवन हमारी पब्लिक सेक्टर कंपनी में बहुत प्रॉमिस है। हमें प्राइवेट वर्सेस पब्लिक नहीं करना, प्राइवेट वर्सेस यू नो लार्ज कंपनी वर्सेस स्टार्टअप नहीं करना, हम सबको एक बनना है, एक मुट्ठी बनना है, पांच उंगलियां एक एक उंगलियां से ज्यादा स्ट्रांग बनेंगी। और अगर हमने स्टार्टअप्स, एकेडमियां, पब्लिक सेक्टर, DRDO, प्राइवेट इंडस्ट्री, स्टार्टअप, MSME ये सब इकट्ठे आ गए तो हम भारत को एक विश्व पटल पर ड्रोन टेक्नोलॉजी पर स्थापित कर पाए।
0: बिल्कुल सर, आपने एक किताब भी लिखी है India's Quest for UAVs and Challenges, तो वो इसी पर ही फोकस्ड है वो कि UAVs जो हैं और ये ड्रोन्स जो हैं उनकी टेक्नोलॉजी को, और उस पर किस तरीके की सर इसमें जो कंटेंट जो किताब आपने लिखी?
1: देखिए, ये किताब 2014 में मैं सेंटर फॉर एयर स्टडीज में गया था।
0: अच्छा,
1: जब मैं वहां रिसर्च करने गया तो मुझे गाइड किया गया
0: जी।
1: हमारे वहां डायरेक्टर जनरल मार्शल पटनी और बाकी जो टीम में बोला गया कि मुझे ड्रोन्स पे रिसर्च करनी
0: जी। आपने ऑलरेडी एविएशन ड्रोन्स, काउंटर ड्रोन सिस्टम सब पर रिसर्च की।

0: आपने
1: जी,
0: जी
1: तो मुझे लगता है कि ये भारतीय वायुसेना ने और हमारे जो सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज, जिसको
0: ओके
1: आजकल सेंटर फॉर एरोस्पेस पावर
0: जी
1: एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज कहते हैं, कैप्स, वहाँ पर मेरे जो लीडर्स थे और जो मेरे सीनियर्स थे और मेरे जो
0: जी
1: कलीग्स थे,
0: जी
1: उनमें मेरे एक ग्रुप कैप्टन विवेक कपूर हैं, हमारे एयर मार्शल नौहार हैं, एयर मार्शल पटनी हैं, एवीएम, बहुत सारे मेरे जो सीनियर्स हैं
0: जी
1: जिन्होंने मुझे गाइड किया। और मैं उसमें, मुझे याद है कई स्कॉलर्स होते थे जो
0: अच्छा
1: नॉर्मल पीएचडी या एमएससी कर रहे थे और कैप्स में रिसर्च
0: अच्छा
1: कर रहे होते थे, वो
0: जी
1: हमें
0: जी
1: गाइड करते थे
0: ओके
1: कि रिसर्च कैसे की
0: जी
1: जाती है।
0: आप खुद भी सर एक हेलीकॉप्टर पायलट इंडियन एयरफोर्स के, और फिर रिसर्च में आप आए, तो ये भी बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन था।
1: जी, मेरे मुझे इसमें मैं कहना चाहूँगा, ग्रुप कैप्टन विवेक कपूर ने मुझे
0: जी
1: नज किया कि भाई आप पीएचडी कीजिए।
0: ओके
1: तो ये मुझे लगता है कि वो मेरे मेंटर और गाइड रहे, उन्होंने जैसे उन्होंने सिखाया, जैसे
0: जी
1: उन्होंने गाइड किया, अभी भी मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ।
0: जी
1: फिर मैंने जेएनयू में से जब पीएचडी की, तो मेरे जो प्रोफेसर थे
0: जी
1: मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरे जो कोलीग्स थे जिन्होंने मेरे साथ पीएचडी की, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, कैप्स में बहुत कुछ सीखा। और अब जो है, मैं आईडीएसएम में हूँ, एमपी आईडीएसएम, मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ
0: जी
1: डिफेंस
0: जी
1: स्टडीज एंड एनालिसिस, वहाँ के डायरेक्टर जनरल हैं, एम्बेसडर चुनाव, और बहुत सारे मेरे जो सीनियर्स और फ्रेंड कलीग्स
0: जी
1: हैं। मुझे लगता है मेरे लिए एक बहुत ही सीखने का समय है, और मुझे लगता है कि ये ज्ञान जो है भारत के फ्यूचर, भारत को एरोस्पेस पावर बनाने के लिए, भारत
0: बिल्कुल
1: को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, भारत को एक सशक्त और विकसित भारत बनाने के कंट्रीब्यूट करे, तब मैं सोचूंगा कि मैंने अपना एक कुछ कंट्रीब्यूट किया।
0: बिल्कुल सर, इसी बात पर मैं भी ये भी जानना चाहूंगा अभी कि अभी जिस तरीके से आपने सब चीजें बताई, आत्मनिर्भर भारत और हम मेड इन इंडिया के थ्रू जिस तरीके से हम अपने आप चीजों को बना रहे हैं और अपने आप को कैपेबल बना रहे हैं, सेल्फ रिलायंस बना रहे हैं, तो 2047 में, 2047 में आप क्या मतलब देखना चाहते हैं, किस तरीके से आप एक्सपेक्ट करते हैं? और खास तौर से इसके साथ ये भी कि जो इंडियन एयरफोर्स की एरोस्पेस पावर बनाने के लिए जो एक विजन होना चाहिए वो किस तरीके से आप देखते हैं?
1: देखिए, भारतीय वायुसेना ने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए। उन्होंने अभी एक
0: जी
1: डायरेक्टरेट ऑफ रिमोट बनाया, जो एक बहुत ही प्रोग्रेसिव सेट है। मेहर बाबा सॉन्ग कॉम्पिटिशन है, वो भी एक प्रोग्रेसिव सेट है।
0: जी
1: लेकिन एक पार्ट है जो मुझे लगता है भारतीय वायुसेना एक फैसिलिटेटर है, एनेबलर है,
0: ठीक है
1: जिसकी वजह से हम काफ़ी कुछ कर पाए हैं।
0: जी
1: लेकिन मैं चाहता हूँ कि भारतीय वायुसेना पार्टनर बने डिज़ाइन डेवलपमेंट में। देखिए क्या है, हमारी इंडियन नेवी में शिप बिल्डिंग डिज़ाइन ब्यूरो है,
0: जी
1: तो उससे हमारा शिप बिल्डिंग का इम्पोर्ट बहुत कम हो गया है और
0: ठीक है
1: उसका सक्सेस रेट बहुत बढ़ गया है। तो अगर मुझे भारतीय वायुसेना एक एरोनॉटिक, एरोस्पेस डिजाइन बोर्ड या एरोस्पेस रिसर्च लेबोरेटरी और एरोस्पेस रिसर्च वर्टिकल बनाएगा,
0: जी
1: तो हमारा जो एरोस्पेस प्रोजेक्ट है उसमें सक्सेस रेट बहुत
0: बढ़ जाएगा,
1: बढ़
0: बिल्कुल
1: जाएगा।
0: बिल्कुल
1: और मुझे लगता है कि मैं चाहूंगा भारत जो है आत्मनिर्भर सशक्त एरोस्पेस फोर्स बने, भारतीय वायुसेना जो है
0: जी
1: आत्मनिर्भर सशक्त एरोस्पेस फोर्स बने 2047 तक।
0: जी
1: हम आत्मनिर्भर हों एरो इंजन में, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में, मैंड अनमैंड फाइटर्स में, स्पेस टेक्नोलॉजी में, एंड क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। ये जो पांच वर्टिकल हैं, ये भारत को, भारतीय वायुसेना को सशक्त रियली बना सकते हैं, और जो भारत एरोस्पेस डिजाइन ब्यूरो है
0: जी
1: उसकी कमियों को सक्सेसफुल होगा। हमारे जितने भी इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स हैं,
0: जी
1: हमें उसको कैसे सक्सेसफुल बनाना है, उसमें थ्री प्रॉन्ग्ड अप्रोच करें, टेक्निकल रिव्यू कीजिए, रीओरिएंटेट कीजिए, कोर्स करेक्ट कीजिए और उनको सक्सेसफुल बनाइए। ये
0: बिल्कुल
1: मेरा
0: सर
1: एक विजन है, मेरा सपना है, ताकि मैं अपने फाइटर्स, भारत में बने, भारत में
0: बिल्कुल
1: डिजाइन किए फाइटर्स, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर और यूएवीज उड़ाऊं और उन्हीं एयर डिफेंस सिस्टम से देश की रक्षा करूं, उन्हें एक्सपोर्ट करूं और भारत को विश्व पटल पर डिफेंस एंड एरोनॉटिक्स का एक सशक्त एक्सपोर्टर बना पाऊं और भारतीय अर्थव्यवस्था में
0: जी
1: एक कॉन्ट्रीब्यूट कर पाऊं।
0: कंट्रीब्यूशन भी हो, बिल्कुल सर। मैसेजेस हमारे पास लगातार आ रहे हैं, मैं आपको कुछ मैसेज यहाँ पर पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। ये मैसेज है राजेश भल्ला, एडवोकेट हैं कंकर खेड़ा मेरठ से। ये कहते हैं सर, डर से डरना नहीं है, डर तो सूझबूझ भी देता है।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं इनसे
0: जी
1: मानता हूं कि वही मेरे सीनियर की बात याद आई कि भाई डर से ही
0: जी
1: आपको,
0: जी
1: डर को पॉजिटिवली यूज
0: जी
1: कीजिए,
0: वही डर आपके लिए
1: ये
0: ताकत बनता है
1: ताकत बनता है अगर आप उसको ठीक से इस्तेमाल
0: अगर
1: करें।
0: आप ठीक से इस्तेमाल करें। जी और ये मैसेज का इन्होंने रिस्पॉन्ड किया है, एयरफोर्स इज द बेस्टेस्ट इन द यूनिवर्स, दीपांशु भटिंडा से। इसके अलावा ये मैसेज है सर, भारतीय वायुसेना दिवस के अवसर पर आप सबको विनम्र अभिवादन, आज के मेहमान कैप्टन सर से बातचीत सुनना अच्छा लग रहा है, मानसी महाशकर

0: सर अब समय हमारे पास कम बचता है, हम यहाँ आपसे ये जानना चाहेंगे, आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस है सर, आपने वायु सेना मेडल से भी आपको सम्मानित किया गया था, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं सर, किस उपलक्ष्य में
1: देखिए,
0: और
1: ये
0: आपकी सर्विसेज के लिए।
1: देखिए, वायु सेना मेडल प्रोफेशनलिज्म के लिए दिया गया था। शायद
0: जी
1: इसमें जो मेरा एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट हुआ था,
0: जी
1: हम तीनों लाइफ बची हमारी,
0: बिल्कुल
1: और मुझे लगता है कि वो वायु सेना मेडल मुझे नहीं, मेरे इंस्ट्रक्टर्स को दे जाना चाहिए,
0: क्या बात है
1: क्योंकि
0: सर
1: क्योंकि उन्होंने जो सिखाया ना होता,
0: जी।
1: क्योंकि कई लोग हैं जो सर्वाइव नहीं किए हैं ऐसे एक्सीडेंट्स में। और देखिए, मैं बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे उड़ा रहा था, 18,000 फीट पे, जहाँ पर बहुत ही कम जो है डेंसिटी होती है। तो मुझे लगता है जो मेरे सीनियर्स या जो मेरे कलीग्स थे ले में क्या होता है कि अगर आप
0: जी
1: जूनियर पायलट भी हैं, अगर आप कैप्टन हैं,
0: जी
1: तो अगर आपका वो क्वालिफिकेशन है तो आप कैप्टन है। तो
0: ओके
1: मैं उस वक्त को पायलट, उस सॉर्टी से पहले को पायलट था, सिर्फ इस
0: अच्छा
1: सॉर्टी के लिए कैप्टन था। तो मेरे जो जूनियर थे लेकिन कैप्टन थे, तो उनसे जो सीखा, मुझे लगता है कि भारतीय वायुसेना की प्रोफेशनलिज्म को मैं देना चाहूंगा और अपने सीनियर्स को देना चाहूंगा।
0: सर, इसी बात पर मैं आगे आपसे पूछूं कि आपका जो करियर रहा इंडियन एयरफोर्स में, तो आपकी लाइफ का क्या एक्सपीरियंस था, किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा?
1: देखिए, वायुसेना एक एक आम स्कूल के बच्चे को एक एक प्रोफेशनल ऑफिसर बनाता है, उसे लीडर बनाता है, उसे रिस्पॉन्सिबल बनाता है,
0: जी
1: उसे अनफोर्सीन सिचुएशंस में डील करना सिखाता है, उन्हें अपने अपने सबॉर्डिनेट्स को देखना सिखाता है, उन्हें अपने फैमिली अपने को पीछे रख के अपने देश
0: जी
1: को
0: जी
1: आगे
0: देश को
1: रखना
0: आगे
1: से
0: रखना ये
1: अपने
0: सिखाता
1: अपने
0: है।
1: सबॉर्डिनेट्स को आगे रखना चाहता है, उसे कैसे वायुसेना को अगला बनाना है वो सोचना सिखाता है, और कैसे अनफोर्सीन सिचुएशंस हो उसको संभालना है। तो
0: जी
1: ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है।
0: बिल्कुल
1: मुझे लगता है कि आज मैं जो बन पाया हूँ, ये भारतीय वायुसेना की वजह से कर बन
0: जी
1: पाया हूँ।
0: जी
1: एक स्कूल से निकला और कॉलेज से निकला हुआ स्टूडेंट जब
0: जी
1: उसमें आता है,
0: जी
1: कोई इंजीनियर बनता है, चाहे कोई पायलट बनता है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर बनता है,
0: जी
1: वो सब
0: सर, जैसे
1: भारत के
0: आपने
1: एक
0: अपने
1: बहुत अच्छे उस्ताद।
0: स्टूडेंट्स स्टूडेंट लाइफ का किस तरीके से आपने वो मोटिवेशन, आप यूथ को आज का जो नेक्स्ट जो हमारा फ्यूचर पायलट होगा और यूथ होगा, उसको कैसे आप क्या कहना चाहेंगे, कोई मैसेज कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे?
1: मैं चाहूंगा कि जो भारतीय वायुसेना में जान ज्वाइन करना चाहते हैं, ये बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है,
0: जी
1: ये आपको एक रिस्पेक्ट दिलवाता है, आप भारत की एक्चुअली सेवा कर पाते हैं, आप अपने आप को बहुत अच्छा कैपेबल बनाइए, आप
0: जी
1: हमारे लिए टेक्नोलॉजी बनाइए, आप भारत को कैपेबल बना सकते हैं, मेडिकल के, एडमिनिस्ट्रेटिव, इंजीनियर, पायलट, बहुत तरीकों से आप बन
0: बिल्कुल
1: सकते हैं।
0: सर, सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला और इतनी अच्छी इतनी काम की और इतनी कीमती बातें आपने आज हमसे की, बहुत बहुत धन्यवाद आपके आने के लिए आज के एयरफोर्स डे स्पेशल पर। आप हमारे आज के खास मेहमान ग्रुप कैप्टन डॉक्टर राजीव कुमार नारंग, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू सर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।

రెయిన్బో 101.9.

0: రెయిన్బో 101.9.
1: जागते रहो जागते रहो,
2: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
1: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
2: अफवाहों से
1: धोखाधड़ी से
2: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति
1: अपने जिम्मेदारियों के प्रति
2: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से,
1: सजग भारत
2: जागरूक भारत
1: सशक्त भारत।
2: सुनिए सजग भारत
1: हर सोमवार सुबह 11 बजे सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर।
2: सजग भारत,
1: जागरूक बनिए
2: सजग
1: रहिए।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, FM 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियोज की घड़ी में 9:30 हो चुके हैं। वक्त हुआ चला है उर्दू प्रोग्राम नए रंग का।

0: है हर किरण, मौत पर जिंदगानी है साया फिगा।
1: साया फिगन,
0: क्या
1: वाह
0: कहने,
1: वाह
0: शुक्रिया
1: बहुत हो
0: शुक्रिया।
1: बहुत हो।
0: मौत पर जिंदगानी है साया फिगन, शम्मे रुखसार की लौ अगर बढ़ गई। शम्मे रुखसार की लो अगर कुछ बड़ी, खुद बे खुद आके परवाना जल जाएगा।
1: वाह बहुत हो।
0: खुद ब खुद आके परवाना जल जाएगा। आंख दर पर लगी जान लप पर अड़ी।
1: वाह क्या
0: वाह।
1: कहने हैं।
0: आंख दर पर लगी जान लप पर अड़ी, जान कनिका है आलम घड़ी दो घड़ी।
1: वाह बहुत हो बहुत हो।
0: आंख दर पर लगी जान लप पर अड़ी, जान कनिका है आलम घड़ी दो
1: घड़ी दो घड़ी।
0: घड़ी। शरबते दीद आकर पिला दे अगर,
1: वाह क्या कहने,
0: शरबते दीद आकर पिला दे अगर, दम जो अटका हुआ है
1: निकल
0: निकल
1: निकल
0: जाएगा।
1: जाएगा। बहुत हो
0: दम जो
1: बहुत हो,
0: अटका हुआ है
1: निकल
0: निकल
1: जाएगा
0: जाएगा। शादुमा वो वहां,
1: जी।
0: गमजदा हम यहाँ।
1: वाह क्या
0: वाह।
1: कहने, बहुत हो
0: शादुमा
1: वाह।
0: वो वहां, गमजदा हम यहाँ, कह कहे हैं उधर और इधर सिसकियां।
1: सिसकियां, क्या कहने, बहुत हो।
0: वाह
1: वाह
0: शुक्रिया। कह कहे हैं उधर और इधर सिसकियां, दिन बहारो खिजा के गुजर जाएंगे।
1: वाह बहुत
0: वाह।
1: हो,
0: दिन बहारो खिजा के गुजर
1: गुजर जाएंगे,
0: जाएंगे। वक्त का काम टलना है टल
1: टल
0: जाएगा।
1: जाएगा बहुत हो,
0: वक्त का काम टलना है टल
1: टल
0: जाएगा।
1: जाएगा।
0: आंख पथरा गई होठ थर्रा गए।
1: वाह
0: आंख पथरा गई होठ थर्रा गए, मंजिले गम की सरहद पे हम आ गए।
1: वाह बहुत हो।
0: आंख पथरा गई होठ थर्रा गए, मंजिले गम की सरहद पे हम आ
1: हम आ गए।
0: गए। मौत का एक सहारा है बाकी अभी।
1: वाह क्या
0: अच्छा,
1: कहने, बहुत
0: क्या
1: हो।
0: कहने। मौत का एक सहारा है
1: है
0: बाकी
1: बाकी अभी।
0: अभी, तेज धड़केगा दिल और संभल जाएगा।
1: वाह बहुत
0: वाह।
1: हो,
0: तेज धड़केगा दिल और
1: और
0: संभल
1: संभल
0: जाएगा।
1: जाएगा।
0: मक्ता पेश खिदमत है।
1: इरशाद
0: दिल को हारी हुई
1: जी।
0: गम की मारी हुई।
1: अरे वाह क्या
0: वाह, क्या
1: कहने।
0: कहने। दिल को हारी हुई गम की मारी हुई, आपके होते बानो बेचारी हुई।
1: हुई, वाह वाह वाह बहुत
0: वाह
1: खूब, बेहतरीन कलाम से नवाज रही
0: वाह।
1: हैं।
0: दिल को हारी हुई गम की मारी हुई, आपके होते बानो बेचारी हुई।
1: जी
0: दास्ताने अलम उसकी सुन लो अगर,
1: अच्छा
0: दास्ताने
1: सुन लेंगे
0: अलम
1: जरूर
0: उसकी सुन लो अगर,
1: जी,
0: आपका भी कलेजा दहल
1: दहल
0: जाएगा।
1: जाएगा। वाह
0: वाह
1: क्या कहने,
0: वाह।
1: बहुत
0: आपका
1: खूब,
0: भी कलेजा
1: दहल
0: दहल
1: जाएगा
0: जाएगा।
1: बहुत
0: वाह।
1: खूब।
0: एक पल में कयामत हो बरपा अभी,
1: वाह
0: मेरे सर से ये आंचल
1: जो
0: जो
1: ढल
0: ढल जाएगा।
1: जाएगा,
0: वाह
1: बहुत खूब बहुत
0: बहुत।
1: खूब। ये थी मोहतरमा अर्जुमन बानो साहबा, जो के अपने बेहतरीन कलाम से आपके कानों में रस घोल रही थी।
0: मोहतरम सामाइन, अब आपके रूबरू अपना कलाम सुनाने आ रही हैं आज के मुशायरे की निजामत करने वाली मशहूर शायरा सबिहा तबस्सुम। उन्हीं के शेर से उन्हें दावत सुखन दे रही हूँ। मौसम है खुशगवार गजल कह रही हूँ मैं।
1: वाह
0: मौसम है खुशगवार गजल कह रही हूँ मैं। हर गुल पे है निखार
1: गजल
0: गजल
1: कह
0: कह
1: रही
0: रही
1: हूं
0: हूँ
1: मैं।
0: मैं। सभ्या तबस्सुम जी।
1: बहुत शुक्रिया। इस मुशायरे में सबसे पहले मैं इसका आगाज करने जा रही हूँ। अपना कलाम सुनाने से पहले खिताब पेश करने की इजाजत चाहती हूँ सदरे मोहतरमा हिना शहीदी साहबा से। वतन में अमनो अमा का चलन रहे या रब, वतन में अमनो अमा का चलन रहे या रब,
0: आमीन
1: दुखी हैं जितने सभी को खुशी मिले या रब।
0: आमीन
1: वाह
0: आमीन।
1: बहुत शुक्रिया। दुखी हैं जितने सभी को खुशी मिले या रब, यही दुआ है हमेशा से इस तबस्सुम की। यही
0: वाह
1: दुआ है हमेशा से इस तबस्सुम की, हर एक लब पे तबस्सुम बिखेर दे या रब। हर
0: वाह
1: एक
0: वाह।
1: लब पे
0: तबस्सुम बिखेर
1: तबस्सुम
0: दे
1: बिखेर
0: आमीन।
1: दे
0: वाह
1: या
0: वाह
1: रब।
0: वाह बहुत वाह।
1: एक और खिताब पेश करने की इजाजत चाहती हूँ, जो कि मेरा तारुफी खिताब है। उर्दू की शायरा हूँ मैं हिंदी कवित्री, उर्दू की शायरा हूँ मैं हिंदी कवित्री, उर्दू बहन भी है मेरी रोजी भी है मेरी, उर्दू बहन भी है मेरी रोजी भी है मेरी, बहनों से दोनों है रिश्ता मेरा जुड़ा हुआ,
0: वाह।
1: बहनों से दोनों रिश्ता है मेरा जुड़ा हुआ, बहनों से दोनों रिश्ता है मेरा जुड़ा हुआ, दिल में है दोनों ही की मोहब्बत बसी हुई, दिल में है दोनों ही की मोहब्बत बसी।

0: अब मैं एक नज्म सुनाने की इजाजत चाहती हूँ सदर साहबा से, अगर इजाजत हो
1: इजाजत,
0: तो, जिसका उनवान है औरत। दीन हक से पहले औरत की कोई उख़त न थी, दीन हक से पहले औरत की कोई उख़त न थी, ये खुली सच्चाई है तारीख उठा कर देखिए। दीन हक से पहले औरत की कोई उख़त न थी, ये खुली सच्चाई है तारीख उठा कर देखिए। औरतों को इज्जत उसअत मिली इस्लाम से, औरतों को इज्जत उसअत मिली इस्लाम से, औरतों की अहमियत अजमत बढ़ी इस्लाम से, औरतों की अहमियत अजमत बढ़ी इस्लाम से। औरतें हर रूप में अल्लाह का इनाम है, औरतें हर रूप में अल्लाह का इनाम है, रूप माँ का दे के जन्नत पाँव के नीचे रखी, रूप माँ का दे के जन्नत पाँव के नीचे रखी। बहुत शुक्रिया। प्यार बहनों का दिया तो घर में रौनक बढ़ गई, प्यार बहनों का दिया तो घर में रौनक बढ़ गई, बेटियों के रूप में रहमत को बरसाने लगा, बेटियों के रूप में रहमत को बरसाने लगा। मर्तबा औरत का जो नादान समझते ही नहीं, मर्तबा औरत का जो नादान समझते ही नहीं, मर्तबा औरत का उनको अब समझना चाहिए, मर्तबा औरत का उनको अब समझना चाहिए, जाहिलाना सोच को अपनी बदलना चाहिए, जाहिलाना सोच को अपनी बदलना चाहिए, औरतों को जेवरे तालीम देना चाहिए। बहुत शुक्रिया। औरतों को जेवरे तालीम देना चाहिए। तवज्जो चाहती हूँ। काम कर सकती है औरत रह के पाबंदे हिजाब, काम कर सकती है औरत रह के पाबंदे हिजाब, करती है अपनी हिफाजत रह के पाबंदे हिजाब, करती है अपनी हिफाजत रह के पाबंदे हिजाब। ये मिसरा में नजर करती हूँ उन सारी ख्वातीन और मेरी बहनों के नाम जो के पाबंदे हिजाब रहते हुए भी सारी जिम्मेदारियां निभा रही हैं। औरतें सारी हैं इस्लामी शरीयत की अमी, औरतें सारी है इस्लामी शरीयत की अमी, दुश्मनाने दी के आगे बरसरे पैकार हैं, दुश्मनाने दी के आगे बरसरे पैकार हैं। पै करे सार औरत पै करे सब्रो रजा, पै करे एसार औरत पै करे सब्रो रजा, प्यार का सागर है औरत पै करे महरो वफा, प्यार का सागर है औरत पै करे महरो वफा। इस हकीकत से कोई इनकार कर सकता नहीं, इस हकीकत से कोई इनकार कर सकता नहीं, रौनकें दुनिया की सारी औरतों के दम से है, रौनकें दुनिया की सारी औरतों के दम से है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक और नज्म तरन्नुम में सुनाने की इजाजत चाहती हूँ सदर मोहतरमा, अगर इजाजत दें तो। बनके खुशबू मैं हवाओं में बिखर जाऊंगी,

0: ऊंगी।
1: वाह वाह
0: बहुत शुक्रिया, बहुत
1: बहुत खूब
0: शुक्रिया।
1: बहुत खूब।
0: अभी आप समाप्त फरमा रहे थे सभी तबस्सुम को।
2: बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं इस मुशायरे की सदारत के फराइज अंजाम देने वाली मोहतरमा हिना शहीदी साहबा को दावत सुखन देने जा रही हूँ, लेकिन उससे कबल मैं ये बताती चलूँ कि आज का ये मखसूस मुशायरा, जो कि आल इंडिया रेडियो उर्दू नैरंग प्रोग्राम के लिए मुनक्किद किया जा रहा है, इसके लिए हम आल इंडिया रेडियो के तमाम इंतजामिया के दिल की गहराइयों से ममनून और मशकूर हैं कि उन्होंने ये सुनहरा मौका हमें फ्राहम किया है ताकि हम आपके कानों तक पहुंच सकें और आपके हम आपकी समाअतों तक पहुंच सकें। तो अब मैं दावत सुखन देने जा रही हूं इस मुशायरे की सदारत के फराइज अंजाम देने वाली मशहूर और मारूफ शायरा मोहतरमा हिना शहीदी साहबा को उन्हीं के इस शेर से। गम की अजमत बढ़ाते रहे, गम की अजमत बढ़ाते रहे, आदतन मुस्कुराते रहे, मुस्कुराती हुई चेहरे की मालिका मोहतरमा हिना शहीदी साहबा।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सभी। गजल से पहले खता पेश खिदमत है।
2: इरशाद।

0: वाह वाह, क्या कहने, बात हो।
1: दुनिया में रोशनी है हवा की बेटियों से,
0: बहुत खूब,
2: बहुत खूब,
1: शुक्रिया, माहौल सर खुशी है हवा
0: हाँ, की
1: की
0: बेटियों से, बहुत खूब,
1: बेटियों
0: बहुत अच्छे,
1: से, बहुत
0: बहुत खूब,
1: शुक्रिया,
0: बिल्कुल सही।
1: माहौल

0: वाह कहने, क्या कहने, बहुत खूब।
1: समझते हैं वादा वफा कर रहे हैं। शेर तवज्जो चाहता है,
0: इरशाद इरशाद, हाँ।
1: कभी

0: बेहतरीन,
1: वो
0: बहुत खूब,
1: अपना समझ
0: बहुत
1: कर
0: जफा
1: जफा
0: कर रहे हैं,
1: कर
0: बहुत खूब।
1: रहे
0: हाँ
2: हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हालात हाजरा पर एक गजल है,
0: इरशाद इरशाद।

0: हद इम्कान देख रहे
1: वाह वाह, बहुत
0: हैं,
1: खूब।
0: शुक्रिया, ताहद इम्कान देख रहे हैं। शेर पेश खिदमत है। शहर को सारे आग लगा कर, शहर को सारे आग लगा कर, जश्न
1: वाह
0: चराग़ां
1: वाह वाह, बहुत
0: देख
1: खूब
0: रहे हैं,
1: बहुत खूब।
0: जश्न चराग़ां देख रहे हैं। होता है बर्बाद गुलिस्तान।
1: जी।

0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: वो हमें हैरा देख रहे हैं, जोश बहारा।
0: वाह वाह वाह,
1: बहुत बहुत
0: क्या कहने, बहुत खूब बहुत खूब। ये थी हमारे इस मुशायरे की सदारत के फराइज अंजाम देने वाली मोहतरमा हिना शहीदी साहबा। जुनू वाले जिक्र वफा कर रहे हैं, जुनू वाले जिक्र वफा कर रहे हैं, जमाने की शायद खता कर रहे हैं। ये थी मोहतरमा हिना शहीदी साहबा। इसी के साथ ही आज के इस खुसूसी मुशायरा का यहीं पर इख्तिताम अमल में लाया जा रहा है। तो सामईन, इसी तरह आप सुनते रहें, आइंदा चलते चलते फिर किसी ना किसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।
2: सामईन, अभी आप समाप्त कर रहे थे मुशायरा। इस मुशायरा में हिस्सा लेने वाले शोरा कराम थे मोहतरमा मुही फातिमा, अर्जुमन बानो और हिना शहीदी। अपने हैदराबाद का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा। हैदराबाद तो बहुत तेजी से तरक्की कर रहा, यहाँ पे फ्यूचर सिटी भी बनने वाला है। यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग बन रही, कंपनियां खुल रही, लोगों की सहूलत के वास्ते रोड, फ्लाईओवर और ब्रिजा बनाते जा रहे। तरक्की तो बहुत हो रही मगर एक्सीडेंट भी हो रहे। ट्रैफिक पुलिस और लोगों की भलाई के वास्ते काम करने वाले तंजीमा अपनी पब्लिक को ट्रैफिक रूल्स बता बता के थक जा रहे। हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो, एक्सीडेंटों से बचो बोल रहे, मगर अपने हैदराबादियां हैं कि सुन रहे नहीं। चालाना मारे तो भी पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे को बस इतना ही बोलना है, रोडों पे गाड़ियां नको भगाओ, सीट बेल्ट और हेलमेट पहन के गाड़ियां चलाओ। अपन जब घर से निकलते तो अपने घर वाले अपने घर को आने का इंतजार करते रहते। बगैर हेलमेट के और बगैर सीट बेल्ट के अगर गाड़ियां चलाएंगे तो घर को तो बाद में, पहले उस्मानिया नहीं तो गांधी को पहुंच जाते। रोड सेफ्टी अपने साथ साथ दूसरे लोगों के वास्ते भी बहुत जरूरी है। तो रोड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करो, घर को सही सलामत पहुंचो।

FM 101.9 MHz पर सामाईन आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नए रंग। स्टूडियोज की घड़ी में 10:07 हो चुके हैं। सामाईन, बज़ में अब वक्त हुआ चला है आज के खसूसी प्रोग्राम यानी कि एयरफोर्स डे। और एक और उनवान है जो बैन अल-अक़वामी यौम बसारत पर है। जी हाँ, आज का दिन कोई आम दिन नहीं है, आज 8 अक्टूबर का दिन है। वो तारीखी दिन जब पूरा भारत मिलकर अपने आसमानों के रखवालों यानी इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायु सेना को सलाम पेश करता है। सबसे पहले मैं अपने इन नीली वर्दी वाले हीरोज की शान में ये शेर पेश करना चाहती हूँ। लहू देकर जो देश की सरहदों को आबाद रखते हैं, वो अपने अज्म से हर एक तूफान को बर्बाद रखते हैं। जमीन की बात क्या जो छूते हैं आसमानों की बुलंदी को, जमीन की बात क्या जो छूते हैं आसमानों की बुलंदी को, लोग

जैसा कि दोस्तों हम बात कर रहे थे एयरफोर्स डे, जी हाँ, इंडियन एयरफोर्स सिर्फ जंग लड़ना नहीं जानती बल्कि ये अमन की सफीर भी है। जब भी मुल्क में कोई कुदरती आफत आती है, चाहे वो सैलाब हो, जलजला हो या तूफान, जब रास्ते बंद हो जाते हैं और मदद की कोई उम्मीद नहीं बचती, तब आसमान से गरजते हुए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर नमोदार होते हैं। ये जवान अपनी जान खतरे में डालकर सैलाब में डूबे हुए लोगों को निकालते हैं, उन तक खाना और दवाइयां पहुंचाते हैं। सिर्फ मुल्क के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर इंसानियत पर मुश्किल आती है तो भारतीय वायु सेना के ग्लोब मास्टर जहाज मदद लेकर सबसे पहले वहां पहुंचते हैं। इनका ये रूप हमें सिखाता है कि सच्ची ताकत वही है जो कमजोरों की हिफाजत करे। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये जो अमन और सुकून हमें हासिल है, उसकी एक बहुत बड़ी कीमत हमारे इन नौजवानों ने चुकाई है। कितने ही ऐसे पायलट्स और जवान हैं जो सुबह अपने घर से मुस्कुराते हुए निकले, लेकिन शाम को उनका जसदे खाकी तिरंगे में लपेट कर आया। उन्होंने अपने आज को कुर्बान कर दिया ताकि हमारा कल महफूज रह सके। इन शहीदों की माओं को, उनकी बहनों को और उनके खानदानों को भी हमें सलाम करना चाहिए, जो अपने जिगर के टुकड़ों को देश की खिदमत के लिए हंसी खुशी वायु सेना के हवाले कर देते हैं। आइए इन शहीदों की याद में ये अहद करें, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा, हम उनकी कुर्बानी को कभी जाये नहीं होने देंगे। आज का ये दिन हमें एयरफोर्स के जवानों की तरह डिसिप्लिन, मेहनत और ईमानदारी से जीने का सबक देता है। हमें देश का एक ऐसा शेरी बनना है जिस पर हमारी फौज फख्र कर सके। आइए आज के इस अजीम मौके पर हम सब मिलकर दिल की गहराइयों से अपनी भारतीय वायु सेना के तमाम अफसरान, जवानों और उनके खानदानों का शुक्रिया अदा करें।

0: अपने हैदराबाद का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा। हैदराबाद तो बहुत तेजी से तरक्की कर रहा, यहाँ पे फ्यूचर सिटी भी बनने वाला है। यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग बन रही, कंपनियां खोल रही, लोगों की सहूलत के वास्ते रोड, फ्लाईओवर और ब्रिज बनाते जा रहे। तरक्की तो बहुत हो रही मगर एक्सीडेंट भी हो रहे। ट्रैफिक पुलिस और लोगों की भलाई के वास्ते काम करने वाले तंजीमा अपनी पब्लिक को ट्रैफिक रूल्स बता बता के थक जा रहे। हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो, एक्सीडेंटों से बचो बोल रहे, मगर अपने हैदराबादियां हैं कि सुन रहे नहीं। चालाना मारे तो भी पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ा। मेकू बस इतना ही बोलना है, रोडों पे गाड़ियां नको भगाओ, सीट बेल्ट और हेलमेट पहन के गाड़ियां चलाओ। अपन जब घर से निकलते तो अपने घर वाले अपने घर को आने का इंतजार करते रहते। बगैर हेलमेट के और बगैर सीट बेल्ट के अगर गाड़ियां चलाएंगे तो घर को तो बाद में, पहले उस्मानिया ने तो गांधी को पहुंच जाते। रोड सेफ्टी अपने साथ साथ दूसरे लोगों के वास्ते भी बहुत जरूरी है, तो रोड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करो, घर को सही सलामत पहुंचो।
1: FM 100

101.9 मेगाहर्ट्ज पर सामाइन आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नेरंग। जी हाँ, आज के खसूसी मौजू यानी कि वर्ल्ड साइड डे पर हम बात करेंगे। और आज का जो मौजू है, जिसका ताल्लुक हमारी अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत एहसास और सबसे बड़ी नेमत से है। जी हाँ, आज वर्ल्ड साइड डे है, जिसे हम उर्दू में बैनुल अक़वामी यौमे बसारत कहते हैं। ये दिन हर साल अक्टूबर के दूसरे जुमेरात को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद कोई जश्न मनाना नहीं है, बल्कि इसका मकसद हमें ये याद दिलाता है कि हमें जो नेमत दी गई है, जो सलाहियत दी गई है, वो कितनी अनमोल है और उसकी हिफाजत करना हमारा कितना बड़ा फर्ज है। बसारत जो है, जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा है। जरा तसव्वुर कीजिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए अपनी आंख बंद करके देखिए। आपको हर तरफ अंधेरा नजर आएगा, ना आप अपने प्यारों का चेहरा देख सकेंगे, ना किताबें पढ़ सकेंगे, ना रास्ते तलाश कर सकेंगे, और ना ही कुदरत के हसीन रंगों जैसे बहते हुए पानी, उड़ते हुए परिंदों और खूबसूरत फूलों का नजारा कर सकेंगे। आंखें हमारे जिस्म का वो आईना है जो हमें कायनात से जोड़ती है। सच तो ये है कि हम इस नेमत की कदर तब तक नहीं करते जब तक ये हमारे पास होती है। हम सांस लेते हैं, चलते फिरते हैं और दुनिया के तमाम काम आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि हमारी आंखें सलामत है। लेकिन दुनिया में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो सुबह उठते हैं तो उनके सामने कोई रंग नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक गहरा अंधेरा होता है। समय, डिजिटल दौर और हमारी जो आंखें हैं उससे हमारा बहुत गहरा ताल्लुक है। जी हाँ, इस जो है आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वो टेक्नोलॉजी का दौर है। हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक मोबाइल फोन, लैपटॉप, टीवी और टैबलेट की स्क्रीनों से चिपके रहते हैं। खास तौर पर हमारे बच्चों में स्क्रीन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसका नतीजा क्या निकल रहा है? कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, यानी कि आंखों का खुश्क होना, सर दर्द और छोटी उम्र में ही मोटे मोटे चश्मे लग जाना। हम टेक्नोलॉजी को छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन अपनी आदतों को जरूर बदल सकते हैं। दोस्तों, जो ये आदतें बदलने की बात हमने अभी आपको बताई है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आइए उससे पहले सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में ये खूबसूरत सा गीत।

अपने हैदराबाद का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा। हैदराबाद तो बहुत तेजी से तरक्की कर रहा, यहाँ पे फ्यूचर सिटी भी बनने वाला है। यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग बन रही, कंपनियां खुल रही, लोगों की सहूलत के वास्ते रोड, फ्लाईओवर और ब्रिज बनाते जा रहे। तरक्की तो बहुत हो रही मगर एक्सीडेंट भी हो रहे। ट्रैफिक पुलिस और लोगों की भलाई के वास्ते काम करने वाले तंजीम अपनी पब्लिक को ट्रैफिक रूल्स बता बता के थक जा रहे। हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो, एक्सीडेंटों से बचो बोल रहे, मगर अपने हैदराबादियां हैं कि सुन रहे नहीं। oh, shit! Oh, shit!

0: ताना मारे तो भी पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे को बस इतना ही बोलना है, रोडों पे गाड़ियां नको भगाओ, सीट बेल्ट और हेलमेट पहन के गाड़ियां चलाओ। अपन जब घर से निकलते तो अपने घर वाले अपने घर को आने का इंतजार करते रहते। बगैर हेलमेट के और बगैर सीट बेल्ट के अगर गाड़ियां चलाएंगे तो घर को तो बाद में, पहले उस्मानिया ने तो गांधी को पहुंच जाते। रोड सेफ्टी अपने साथ साथ दूसरे लोगों के वास्ते भी बहुत जरूरी है, तो रोड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करो, घर को सही सलामत पहुंचो।
1: FM 101.9 MHz पर सामयन आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नए रंग। स्टूडियोज की घड़ी में 10:34 हो रहे हैं। अब वक्त हुआ चला है सुरीले गीतों से सजे प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जा, जिसमें हम बात करेंगे नाना पाटेकर के बारे में और साथ ही आपको सुनाएंगे कुछ फिल्मी गीत। जी हाँ, नाना पाटेकर बॉलीवुड के एक बहुत बड़े अदाकार और नेक इंसान थे। उनका असल नाम विश्वनाथ पाटेकर था। वो अपने गुस्से वाले अंदाज और मुनफरिद डायलॉग बोलने की वजह से मशहूर थे। अगर बात की जाए उनकी पैदाइश और बचपन के जो मुश्किलात थे, तो उनकी पैदाइश 1 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में हुई थी। जब वो 13 साल के थे तो उनके वालिद का कारोबार डूब गया। घर का खर्चा चलाने के लिए नाना पाटेकर ने स्कूल के बाद फिल्मों के पोस्टर पेंट करने का काम शुरू किया, जिसके उन्हें महीने के सिर्फ 35 रुपये मिलते थे। फिल्मी दुनिया में उनका नाम और कामयाबी के बारे में अगर हम बात करें, तो उन्होंने थिएटर यानी ड्रामों से काम शुरू किया और 1978 में पहली बार फिल्में नजर आए। इनकी मशहूर फिल्में थी परिंदा, क्रांतिवीर और कॉमेडी फिल्म वेलकम इनकी मशहूर फिल्में रही हैं। इन्हें बेहतरीन अदाकारी पर भारत का बड़ा सरकारी एजाज पद्मश्री और 3 नेशनल फिल्म अवार्ड्स मिले। अगर बात की जाए नाना पाटेकर की सादगी की, तो करोड़ों रुपये कमाने और इतने बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद नाना पाटेकर ने कभी भी अमीराना चमक दमक वाली जिंदगी पसंद नहीं की। वो एक छोटे से सादा कमरे में रहते थे, जमीन पर सोते थे और आम लोगों के साथ बैठकर देसी खाना जैसे चटनी और रोटी बड़े शौक से खाते थे। उनमें जरा भी गुरूर या घमंड नहीं था। समय नाना पाटेकर के बारे में मजीद हम आपसे यूं ही बात का जो सिलसिला है जारी रखेंगे। आइए सुनते हैं गुलामी मुस्तफा से लिया हुआ ये गीत।

जैसा कि दोस्तों हम नाना पाटेकर साहब के बारे में बात कर रहे हैं, जी हाँ, नाना पाटेकर की ज़िंदगी का सबसे मुस्बित पहलू उनका दूसरों की मदद करना था। जी हाँ, जब महाराष्ट्र में किसानों पर बुरा वक्त आया तो उन्होंने नाम फाउंडेशन बनाई। उन्होंने अपनी फिल्मों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा गरीब किसानों के कर्जे उतारने, उनके घरों में पानी पहुंचाने और बेवाओं की मदद के लिए अत्याग कर दिया था। वो कहते थे, पैसा साथ नहीं जाता, इंसान का काम याद रहता है। जी हाँ, बिल्कुल, मुल्क से उन्हें सच्ची मोहब्बत थी। वो एक कट्टर मुहिब्बे वतन इंसान थे। उन्होंने बाकायदा इंडियन आर्मी में शमूलियत अख्तियार की और लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे तक पहुंचे। 1999 ईस्वी की कारगिल जंग के दौरान वो अपनी मर्जी से सरहद पर गए ताकि वहां लड़ने वाले फौजियों का हौसला बढ़ा सके और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सके। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी उनकी इस खूबी की तारीफ करते हुए कहा कि वो हमेशा हक यानी समाजी बुराइयों के खिलाफ एक इनकलाबी आवाज थे। वो इंडस्ट्री के उन चंद लोगों में से थे जो कभी चापलूसी नहीं करते थे और हमेशा सच बोलते थे। उनकी अदाकारी में जो गुस्सा और जज्बा नजर आता था, वो दरअसल माशरे की नाइंसाफियों के खिलाफ

उनका सच्चा रद्द अमल होता था। समय और भी हमारी ये जो बातों का सिलसिला है वो जारी रहेगा। आइए सुनते हैं अगला गीत जो के लिया गया है फिल्म क्रांतिवीर से।

0: कुछ और नहीं ये प्यार का बुखार,
1: क्यों दिल करता है धक धक मेरी यार,
0: कुछ और नहीं ये प्यार का बुखार।
2: Thug, thug.

FM 101.9 MHz पर आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नए रंग। गीत सुरीले गाता जा सिलसिले के तहत हम बात कर रहे हैं नाना पाटेकर साहब के बारे में। जी हाँ, नाना पाटेकर की जिंदगी का जो सफर है वो चूना भट्टी में फिल्मों की पोस्टर पेंट करने वाले एक गरीब लड़के से शुरू होकर बॉलीवुड के एक लाजवाब और पद्मश्री याफ्ता लीजेंड बनने पर खत्म हुआ। वो महज एक अदाकार नहीं थे बल्कि हिंदुस्तानी सिनेमा में अदाकारी के एक मनफरिद दर्जगा थे। उनका कड़क अंदाज, चेहरे के तासुरात और मुकालिमों की जादुई अदायगी आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल है। सबसे अहम बात यह है कि वो पर्दे के बाहर भी एक हकीकी हीरो थे। करोड़ों रुपये कमाने के बावजूद एक छोटे से फ्लैट में रहना, अपनी जिंदगी की कमाई का बड़ा हिस्सा गरीब किसानों और बेवाओं की मदद में लगा देना, ये साबित करता है कि उनका दिल सोने का था। आज यानी अक्टूबर 8, 2026 को अचानक दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हो गया, लेकिन वो अपनी लाजवाब फिल्मों, शानदार डायलॉग्स की वजह से हमेशा याद रखे जाएंगे।

FM 101.9 MHz पर आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग। आइए बज्म के इख्तिताम से कबल सुनते हैं पयाम शब। तहरीर वो पेशकश है जनाब नदीम अख्तर जैदी की।

ये और बात है कि तारुफ न हो सका, हम जिंदगी के साथ बहुत दूर तक गए। जिंदगी में सिर्फ एक साथ चलना काफी नहीं, एक दूसरे को समझना भी जरूरी है। हम बाज लोगों के साथ बरसों गुजारते हैं, उनके दुख सुख में शरीक होते हैं, मगर उनके दिल एहसासात और असल शख्सियत से नावाकिफ रह जाते हैं। इसीलिए रिश्तों में वक्त देने के साथ तवज्जो, गुफ्तगू, खलुस और एहसास भी जरूरी है। लोगों के साथ जिंदगी का सफर तवील करने से पहले दिलों का रास्ता तय कीजिए, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान उम्र भर साथ रहकर भी एक दूसरे से नावाकिफ रह जाते हैं।

इसी खूबसूरत से पैगाम के साथ सामाइन, आज की हमारी ये उर्दू नए रंग की बज्म यहीं पर इख्तिताम को पहुंचती है। उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। कल इन्हीं मीटर्स पर 9:30 पर आपसे हमारी दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शब बख़ैर। जय हिंद।

0: ये हैदराबाद है FM 101.9 MHz पर। स्टूडियोज की घड़ी में 11 बजने ही वाले हैं। चंद ही लम्हों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से बारी बारी से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार नश्र किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कर अधिकारियों का गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में आज जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि परिषद ने जुर्माने और कारावास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया है।
2: The council recommended removing arrest powers under GST.
3: जीएसटी परिषद ने गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने की सिफारिश की है। परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की भी सिफारिश की है। इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम की कर चोरी के मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गई है।
2: From 25,000 to ₹10,000.
1: टैक्स फाइलिंग में गलती या भुगतान करने में विलंब करने पर करदाता को वसूली, ब्याज और आनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्रवाई के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए सुरक्षा ढांचा मजबूत करना बहुत आवश्यक हो गया है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
4: आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है, तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है। फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी, ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको फोन पर आए तो उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा है।
1: श्री मोदी ने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक आधार स्टेशन हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में सबसे तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार संचालकों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर आज विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र एआई और साइबर सुरक्षा, एआई के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने देश की जनता को एक खुला पत्र लिखकर निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने लिखा कि इसके केंद्र में निर्वाचन आयोग है और उच्च न्यायपालिका और वैधानिक एजेंसियां भी इससे अछूती नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में तपेदिक मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत संयुक्त स्वास्थ्य दल जोश टीमों का शुभारंभ किया। ये भारत में तपेदिक उन्मूलन के प्रयासों में युवाओं के नेतृत्व वाली सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में भारतीय सेना की 94वीं वर्षगांठ के समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने वायु सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के सदस्यों से बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने भी वायुसेना दिवस पर देश के सभी बहादुर वायु योद्धाओं को सलाम किया। भारत की पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट

0: literature has been awarded to Canadian poet and essayist Anne Carson. The Swedish Academy, which announced the prize in Stockholm, said the author was honored for her bold and inventive body of work that drew a playful dialogue with the classical tradition. And that's the end of this news bulletin.
1: अब सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्र कार्यक्रम का पुनः प्रसारण.
2: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Gaura Dhawan Lal with my co-anchor Nikhil Kumar.
3: Namaskar shrotao, karobari khabron ke sath hum Market Mantra karyakram lekar hazir hain. Aaj ki khabron par charcha ke liye hamare sath studio mein hain aarthik vishleshak Siddharth Singh. Siddharth, karyakram mein aapka swagat hai.
4: Nikhil aur Gaura, aap dono ko good evening.
3: Aur sabse pehle headlines ke sath main Gaura.
2: Thank you Nikhil and once again Siddharth, welcome to the program.
4: Yeah.
2: Listeners, let's begin with a quick look at the headlines. Benchmark domestic indices decline around 1.5%. Sensex slumps over 1,000 points. Nifty settles below 22,250. GST Council removes arrest power of tax officers. Raises threshold for prosecution from 1 crore to 5 crore rupees. And global crude oil prices surge over 4%.
3: घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज 1.5% की गिरावट. सेंसेक्स 1000 अंक से अधिक लुढ़का. निफ्टी 22,250 के नीचे जाकर बंद हुआ. जीएसटी परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्ति हटाई. मुकदमा चलाने के लिए निर्धारित धनराशि की सीमा को 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए किया गया. और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल.

0: Well, before we move into the program, we'd like to share that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में आज भी सुस्ती जारी रही। सेंसेक्स 1045 अंक यानी 1.44% गिरकर 71,593 पर बंद हुआ। निफ्टी 371 अंक यानी 1.64% लुढ़ककर 22,232 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में और अधिक गिरावट देखी गई। मिड कैप सूचकांक 2.5% से ज्यादा जबकि स्मॉल कैप सूचकांक 2.3% से अधिक नीचे आ गया।
0: Benchmark domestic equity indices extended losses today amid weak global cues. The Sensex tanked 1,045 points or 1.44% to close at 71,593. The Nifty dropped 371 points or 1.64% to settle at 22,232. The broader market at the National Stock Exchange ended with deeper cuts. The mid-cap 100 index lost over 2.5% and the small-cap 100 index declined more than 2.3%.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 27 कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखी गई। सबसे अधिक नुकसान वाली कंपनियों के शेयरों में आईटीसी 4.2% से ज्यादा, इंडिगो लगभग 3.4% और पावर ग्रिड लगभग 3.2% लुढ़क गए। इसके विपरीत टेक महिंद्रा में 0.4% से ज्यादा और एक्सिस बैंक तथा इन्फोसिस में 0.2% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई।
0: All 28 sectoral indices on the BSE succumbed to selling pressure. Among the top laggards, power plunged 3.5%, utilities fell 3.4%, and metal dropped more than 3.3%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 3,426 companies declined, 1,003 advanced, and 225 remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर के मुकाबले मामूली गिरावट के साथ 96.79 पर बंद हुआ। सिद्धार्थ, एक बार फिर से कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज दो सवाल पूछने का मन हो रहा है आपसे। सबसे पहले, एक तो 1000 अंक से अधिक की जो गिरावट हमने देखी सेंसेक्स में, बड़े कारण इनके पीछे क्या रहे? और दूसरा, ये क्या यही वो समय है जब निवेशकों को अपना पैसा मार्केट में लगाना चाहिए, या अभी भी समय है रुकने का, या नए निवेशकों को अपनी किस्मत आजमाने का समय है?
2: नहीं देखिए निखिल, एक तो आपका जो पहला सवाल कि बाजार आज 1100 पॉइंट गिरी और निफ्टी तकरीबन इस साल के सबसे लो

0: स्तर पे आके लो पॉइंट पे बंद हुआ है। तो
1: जी
0: मुझे लगता है कल और आज में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसकी वजह से कि बाजार में 1100 पॉइंट की गिरावट आए, लेकिन हाँ शायद मुझे लगता है जो कॉन्फिडेंस है बाजार में वो कहीं ना कहीं अब टूटता नजर आ रहा है, क्योंकि जो अनिश्चितता है और सारी इसकी सबकी वजह एक अनिश्चितता है, जो अनसर्टेनिटी है वो सर्टेन हो गई है, चाहे वो क्रूड ऑयल को लेके हो। क्रूड ऑयल के प्राइजेज अभी भी बहुत ऊंचे स्तर पे हैं पूरी दुनिया में। अब जो है इंटरेस्ट रेट्स आप देख रहे हैं बढ़ रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, कल हमारे सेंट्रल बैंक ने भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हैं। तो कहीं ना कहीं रेट बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो विकास की जो दर है उस पर भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आने का डर रहता है। हालांकि अभी भी हम दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते हुए देश हैं, जो विकास दर है हमारी अभी भी 7% है, कल आरबीआई ने भी रिवाइज की है, अपवर्ड रिवाइज की है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन का खतरा है, महंगाई, तो वो ये सब मुझे लगता है कहीं ना कहीं बाजार पे जो है अब हावी हो रहे हैं, और इसी का नतीजा हम देख रहे हैं इस तरह की गिरावट बाजार में। और जो दूसरा आपका सवाल है कि क्या निवेशकों को इस समय घुसना चाहिए, उस पर मैं ये जरूर कहूंगा कि देखिए हाँ बाजार जब नीचे गिरती है तो शायद लोग उस समय लोग खरीदते नहीं हैं, लेकिन मैं ये बोलूंगा किसी भी निवेशक को, हालांकि मुझे लगता है अभी भी बाजार में डाउनसाइड है और इस तरह की वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, क्योंकि ये जो कारण है अनिश्चितता के, ये कभी जो या काले बादल मैं कहूँ इस तरह के, और जो और खासकर ये सब बाहर में देश के बाहर से के कारण है, हमारी मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स में कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है ये अभी लंबे समय तक इस तरह की अनसर्टेनिटी दिखती है, ये जल्दी सॉल्यूशन होगा ईरान या अमेरिका का जो युद्ध है, या यूक्रेन और रशिया में आप देखेंगे वॉर की इंटेंसिटी और बढ़ गई है। तो मैं ये कहूंगा कि निवेशकों को बहुत ध्यान से, मतलब बिल्कुल जल्दबाजी नहीं, लेकिन मुझे लगता है हाँ बहुत थोड़ा थोड़ा, बहुत धीरे धीरे, बहुत संभल के आप जरूर मार्केट में एंटर कर सकते हैं, लेकिन इस बात को भी मान के चलें कि तुरंत पैसा नहीं बनेगा।
2: Right. In fact, taking this point forward, Siddharth, when we say that when any time we invest in a falling market, we think it's a falling market and it'll become a rising market. Actually, a falling market could fall further, could stay there,
0: Yeah,
2: takes
0: absolutely.
2: time to become a. So I think anybody who's buying in a falling market should actually be there at least for a little longer period than one would, really expect markets to immediately rebound.
0: Absolutely, Gaurav, because if you look at certain stocks, they are almost at 52-week low now. A lot of them, almost on their one-year lows. But the chances of they dropping further is not ruled out. So that is why I said, first, invest in very, very small tranches, very, very, and be very carefully, choose your sectors, choose your stocks, and the gestation of a return or of getting a healthy return is definitely at least 2 to 3 year time period horizon you should have in mind. Plus, also the levels going further down is not ruled out at all.
2: Right. So, we have global crude oil prices, they're rising, that's a concern. There's this prolonged tight monetary conditions and foreign fund outflows. Just help our listeners also understand when we talk of, tight monetary conditions. One is, of course, interest rates. Anything else?
0: See, basically, what happens is when the interest rates start going up, obviously, India was lucky, I would say, before the rates started going up, we went to the markets overseas and we were able to garner about $130 billion through FCNR deposits, which is a huge plus for us because we are net-net importers of energy
2: Right.
0: and our energy bill, obviously, because of the high crude oil prices, is very high. And what happens in tight monetary conditions also is that people start pulling out from the equity markets because you get a good return in the bond markets and especially the US markets. Why FII is also exiting Indian markets? Because the US Treasury bonds are now almost at 5.5%, and which are seen as most secure investments across the world. So I think that is what happens in the tight monetary market, and that is why we are also seeing an impact in the markets globally also.
1: सिद्धार्थ, जैसा भी आपने FIIs के बारे में जिक्र किया, क्या ये है कि हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, DIIs हैं, उन्होंने मार्केट को भी संभाला हुआ, ऐसी स्थिति में भी जब निफ्टी लगभग 15% नीचे आ चुका है और सेंसेक्स भी अपने 32 महीने के निचले स्तर तक पहुंच चुका है?
0: नहीं निखिल, देखिए अगर ऐसा ना होता, जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं अब वो बहुत बड़े तादाद में बाजार में निवेश करते हैं, चाहे वो रिटेल के थ्रू आए या वो म्यूचुअल फंड रूट से आए, तो अब वो एक और अभी तक ऐसा कोई हमारे पास प्रमाण नहीं है. थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट के लेवल्स में थोड़ा बहुत कमी आई है हम अगर SIP के रूट में देखें, म्यूचुअल फंड में भी, लेकिन विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी मार्जिनल. तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई कारण है जहाँ पे हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टर या डोमेस्टिक कोई कारण हो बाजार के गिरने के. और जहाँ तक आपने FIIs की बात की, मैं दो बातें कहूँगा. देखिए FIIs के पास का जो एक जो उनका इन्वेस्ट करने का जो लॉजिक होता है वो होता है प्रॉफिट इज देयर मोटिव. तो वो ऑब्वियसली उनको लगता है कि दूसरी बाजारों में ज़्यादा में निवेश करके उनको रिटर्न्स बेटर मिलेंगे, तो वो इसलिए जा रहे हैं. दूसरा, जैसा अभी गौरव ने पहले पूछा भी और बात भी हुई इसकी, कि बॉन्ड मार्केट दुनिया भर की बाजारों में जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो काफ़ी ऊपर जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं लोग इक्विटी मार्केट से निकल के बॉन्ड मार्केट की तरफ भी FIIs जा रहे हैं.
1: लार्ज कैप की हम बात करें, मिड कैप सूचकांक और स्मॉल कैप सूचकांक में भी गिरावट देखी. हालांकि कल स्मॉल कैप में थोड़ी सी बढ़त हम देख रहे थे, लेकिन आज वो अच्छा खासा गिर गया.
0: नहीं, मार्केट्स में जो गिरावट है वो जैसा अभी आपने रिपोर्ट में भी पढ़ा, वो कहीं ना कहीं पूरी ऑल राउंड है. मतलब इट इज नॉट स्पेसिफिक टू एनी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप. तो देयर इज जनरल फॉल इन द मार्केट.
1: आगे बढ़ते हैं. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ने मौजूदा वित्त वर्ष में जुलाई से सितंबर के बीच में अपनी दूसरी तिमाही के लिए वित्तीय परिणाम जारी किए हैं. परिचालन गतिविधियों से कंपनी का समेकित राजस्व वार्षिक आधार पर 11% बढ़कर 73,188 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है. TCS का वर्ष दर वर्ष समग्र कुल लाभ 15% की बढ़त के साथ 13,884 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है. इस अवसर पर कंपनी ने निवेशकों के लिए 15 रुपए प्रति शेयर के लाभांश की घोषणा की है. आज एशिया के प्रमुख शेयर सूचकांकों में गिरावट देखी गई. सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 3.5% गिर गया. दक्षिण कोरिया का कोस्पी 2.6% से ज्यादा नीचे आ गया और जापान का निक्केई 225 1.4% से ज्यादा की सुस्ती के साथ बंद हुआ. एशिया के प्रमुख शेयर सूचकांकों में गिरावट आई. ओवरऑल कह सकते हैं कि पूरे संसार का जो मार्केट है आज गिरावट के दौर से ही गुजर रहा है.
0: हाँ बिल्कुल, बिकॉज आई थिंक एक अनिश्चितता है. क्रूड ऑयल उसका बड़ा कारण है. क्रूड ऑयल के जो भाव में तेजी है, साथ साथ जो बॉन्ड यील्ड्स हैं और जो महंगाई का प्रेशर बना हुआ है, तो सारे दुनिया के सेंट्रल बैंक सभी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं और उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट हमको बाजार में दिख रहा है. और ये ऐसा हुआ जो आपने बोला कि हमने देखा कि साउथ कोरिया की मार्केट में भी गिरा, जबकि अगर आप देखेंगे कि जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्टॉक्स या कंपनीज, उनके जैसे सैमसंग में कंपनी का नाम भी लूंगा, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए, उसके बावजूद भी मार्केट में वहां गिरावट देखने को मिली.
2: मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट मेजर स्टोरी, the GST Council has removed the power of arrest of tax officers and raised the threshold for prosecution from 1 crore to 5 crore rupees. The punishment, whether a fine or imprisonment or both, has been left to judicial discretion in every case. A taxpayer who files late, makes a mistake or falls behind on payment will face recovery, interest and a proportionate penalty. Addressing the media following the GST Council meeting in New Delhi this evening, the finance minister said the council recommended removing arrest powers under GST and raising the prosecution threshold.
3: The council recommended removing arrest powers under GST. Council recommended raising the prosecution threshold from 1 crore to 5 crores. So prosecution is not going to happen for anything below 1 crore. Till now, that's been the threshold. Now it's taken up to 5 crores. Anything below 5 crores, no prosecution. And reducing the general penalty from 25,000 to rupees 10,000. Support for exports and small sellers.
2: The finance minister also said no rate changes have been made in the GST Council meeting and the rate structure is settled.
3: GST Council today has recommended common standards for notices and proceedings and no notices below the prescribed monetary threshold of 10,000 rupees, including withdrawal of pending notices below the said threshold. We will not be issuing any notices for monetary threshold of 10,000 or below.
2: Seetharaman said the council has also taken a decision for smoother movement of goods. The council recommended that goods can be inspected, detained or seized only by the officer of the supplier state or the destination state. Goods can be intercepted only on specific intelligence and with the authorization of at least a joint commissioner level officer. So Siddharth, I think, GST is, it's a technical subject, but for our listeners, please help us understand the critical points that have been discussed and somewhere how the fear factor has been, mitigated And the compliance factor probably escalated.
0: Yeah, absolutely, Gaurav. And I would say today's meeting basically focused on the process reforms, the processes that a taxpayer or a person who's doing business faces each day. So they may be related to registration, refund, inputs. And I would say, as you said in the read out in the story also, I think one of the most important features or the announcements today was that arrest powers have been taken away from the GST officers. Plus, at the same time, they've also raised the prosecution limit from 1 crore to 5 crore. So two big announcements or two big, and I would say this is also moving towards a trust-based tax administration. More so, we are trying to have that trust or believe in the person who's doing business. We're trying to move from going after him or having those kind of draconian administrative rules. So, and another thing I would say is another thing which he said is again which brings in a kind of tax certainty is that now only once a year the GST rates would change, only once a year, that is April 1. So we are also trying to somewhere align our tax policy, our indirect tax policy, and with the direct tax policy. The income tax rates also, if they are changed, are also come into effect on April 1. So I think in a way we are trying to align both the, and also I would say simplifying the processes for the taxpayer, for the business community.
2: So alignment and simplification, I think these are two critical things.
1: Siddharth, ye jo do faisle liye gaye hain GST council ki taraf se, isme ek aam listener ke nazariye se agar samajhne ki koshish kare to aam upbhoktaon par iska kya asar padega, aur dusra chote vyapari aur jo MSME mein kaam karte hain unke liye inme kya kuch badlav ho sakte hain ya un par koi asar padega, tamam cheeze isme khas taur pe income tax se credit tax ki jab hum baat karte hain.
0: Nahi dekhiye, bahut acha sawal aapne pucha Nikhil, ki usse ek jo chota businessman hai ya MSME जो सेक्टर में जो लोग हैं उनको क्या फायदा होगा. एक आज एक और इम्पॉर्टेंट बड़ा जो फैसला जो जीएसटी काउंसिल में हुआ वो ये था कि जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं जो या जो जीएसटी के दायरे में आने वाले तकरीबन 5 करोड़ का जिनका वो है टर्नओवर है, उनको जो है केवल सालाना एक बार जो है टैक्स जीएसटी का रिटर्न भरना होगा और उनके लिए क्वार्टरली उनको जीएसटी पेमेंट करना होगा. इस पर एक आज फैसला हो गया है काउंसिल में और एक ऑफिसर्स की कमेटी बनाई गई है जो अगले 90 दिनों में इसके डिटेल्स वर्कआउट करेगी और उसको जो है अगली जो मीटिंग होगी काउंसिल में उसमें उसको लिया जाएगा.
2: राइट, सो सिद्धार्थ, आई नो एंड आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स विद एनी गवर्नमेंट कंप्लायंस इज पीपल वरी अबाउट व्हाट्स द इफेक्ट इफ आई डोंट मैनेज, आई डोंट अंडरस्टैंड प्रोसिक्यूशन. Could you just actually, thread out this word for us?
0: See, prosecution means you are then a criminal prosecution happens. So, as far as till today, as the rules stood, and GST officer could arrest you. Now, if and that is obviously, it's not that something that was happening very regularly. But yes, what we have also, why we have taken away these powers, probably they are not required also. Why do we need it? Because we are not seeing that kind of people not paying taxes or offenders to that large extent.
2: Or evasion.
0: Tax evasion to that large extent. So probably, and so based on that, based on the data, we are moving to a trust-based, as I said earlier, to a trust-based tax administration. And prosecution obviously leads to that kind of fear that you will be arrested, you will be taken to court, then all those kind of things. So that creates a fear in the minds of the people who are into business. They want simpler rules which they can comply easily, and it also brings down the cost for a small taxpayer, if I would say like that. So, and similarly, I would say going forward, I would also say that there are a lot of measures being announced in terms of input tax credit, which is very critical for any business house. So supposing you are a buyer, you have bought you paid your bill, you paid the input tax, or you want to take the credit, perhaps from the person from you bought, he may not have paid the tax. So there also again a committee has been formed for how to make it easy for an honest taxpayer to claim input tax which he has paid.
2: Right. So that means if there's a legacy issue with the chain or with the thread, who is held actually? Is the actual person really being held
0: yes,
2: for that?
0: Yeah. And I would say another very big announcement, which again, I think what the Honorable Finance Minister today said is that they are going to introduce from the central government side for a certain turnover, above certain turnover, people doing businesses above certain turnover, a faceless assessment. So you do not need to go and, or your tax person representative does not need to go to any tax office or a tax appear before a tax official. They would introduce a faceless assessment, as is being now being done very successfully on the income tax side, already being done in the customs side. So I think this again is
2: huge move.
0: Yeah, I think probably it's a very, very big announcement and would go a long way to, because there are a lot of, always we have grievances that people are harassed, all those kind of things. So I think we are moving toward that, and GST almost now 10 years. So I think this is today's meeting, I think has moved, it's a big leap forward in terms.

0: ऑफ ईजिंग द प्रोसेस, सिंप्लीफाइंग द रूल्स।
1: सिद्धार्थ, इसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा, आपसे पूछना भी चाहूंगा कि ये जो फैसले लिए गए हैं, तो ये क्या जीएसटी से जुड़े पुराने विवाद और लंबित मामले चले आ रहे हैं उनको तेजी से निपटाने की दिशा में किए गए प्रयास हैं?
0: बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात कही, क्योंकि निखिल आपने अगर अभी जैसा हमने सुना भी, वित्त मंत्री जी ने बोला कि जिन लोगों को नोटिसेस दिए गए हैं, जहां पे टैक्स पेमेंट जो नॉन टैक्स जो जहां पे टैक्स नहीं दिया गया है, 10,000 रुपये तक के नोटिसेस दी गई हैं, जहां पे डिफॉल्ट जो है 10,000 रुपये तक का है, तो उन वो नोटिसेस भी विड्रॉ कर ली जाएंगी। और बिल्कुल, जब अगर प्रोसिक्यूशन की लिमिट बढ़ेगी या 10,000 रुपये तक आपको अभी तुरंत नोटिस इशू हो जाती थी अगर उसके, तो वो उन सब चीजों से कहीं ना कहीं जो है, एक तो टैक्स ऑफिशियल का भी काम घटेगा,
1: जी
0: क्योंकि वो भी ज्यादा फोकस कर पाएंगे कि जहां एरियाज जहां पे ज्यादा उनको लोगों को फायदा देने की जरूरत है, टैक्स पेयर सर्विसेज बेटर करने की जरूरत है, साथ साथ जो टैक्स पेयर है उसको भी कंप्लायंस बर्डन उसका कम होगा जब इस तरह की चीजें
2: In
0: होंगी।
2: fact, the more one is listening to you, I can actually feel a lot of sighs of relief across, you know, saying, okay, we've been holding our breath, this is how it is. Yeah.
0: And I would also add, Gaurav, one thing more for our listeners, that companies which are now paying for health and life insurance plans for the companies, for their employees, they can also claim input tax credit. Plus also the telecom towers and the pipelines outside their factories installation, for that also now input tax credit is being brought in.
2: Right.
1: Okay. आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। उन्होंने आज द प्रॉमिस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय पर वैश्विक प्रगति रिपोर्ट जारी की। श्री वैष्णव ने कहा कि आगामी परामर्श पत्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा, इसके लाभ तथा संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने और लोगों को डीप फेक जैसे हानिकारक अनुप्रयोगों से बचाने पर बल दिया जाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि कृषि, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में एआई के उपयोग से समाज को अधिकतम लाभ मिलेगा। सिद्धार्थ, एक ग्राउंड लेवल पर अगर एआई के इस्तेमाल की हम बात करते हैं, तो सरकार का ये प्रयास है कि आम लोगों तक भी एआई का इस्तेमाल पहुंचे और डीप फेक जैसी समस्याएं हैं उनसे भी बचने में मदद मिले, साथ ही जो इनका वैल्यूएबल एक इस्तेमाल किया जा सकता है उस पर बात होनी चाहिए, उस पर काम होना चाहिए, तमाम कोशिशें इसी चीज को लेकर हैं।
0: इसी के लिए मुझे लगता है उन्होंने जो हमारे आईटी मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी ने जो कहा है कि कंसल्टेशन पेपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हमसे जुड़े जो भी मुद्दे हैं उनके बारे में जो है वो फ्लोट किया जाएगा और पब्लिक कंसल्टेशन किया जाएगा, और उसमें जो मुझे लगता है सबसे ज़रूरी है, जो आपने बात बोली कि डीप फेक है, साइबर सिक्योरिटी है, उसके जो नुकसान है उनको जो है लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, और कैसे उसका हम जो है अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर, चाहे वो कृषि हो या मौसम के बारे में किसानों तक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। और मुझे लगता है एआई एक ऐसा क्षेत्र है जो अब हमारे आपके सबकी जिंदगी को रोज छुएगा और छू रहा है, तो इसमें अगर सरकार को बहुत तेजी से काम कर रही है तो ये मुझे लगता है इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन।
2: राइट, एंड फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर वी हैव एजुकेशन, वी हैव एक्चुअली लॉट ऑफ डेप्थ टू ट्रैवल, नॉट ओनली विड्थ, I think it's important the earlier we start the better.
0: Yeah, because I think yes, though we have education, obviously everybody is, most of the people here have now access to education, still people are being cheated on these lines. So I think government is taking
2: awareness
0: the right
2: is
0: step.
2: Right. Yeah. Absolutely. In our next story, India has joined the United States and 13 other economies in signing a joint ministerial statement calling for measures to address structural excess capacity and production and curb non-market policies that distort global markets. The joint ministerial statement signed by the 15 participating economies was released by the Office of the U.S. Trade Representative last night, following discussions among G20 trade ministers in Milwaukee, Wisconsin, on September 30th and October 1st, 2026. So we are seeing, you know, whether it's the G20, whether it's BRICS, it's about, different countries coming together to work towards a common goal, and they're coming together not only on big mega issues, but even smaller little things, and I think that's where cohesion... You'd earlier used two words for the GST, which is, alignment and synchronicity. I think it's working globally.
0: Yeah, I think, and obviously, though we have issue with United States as far as our trade pact, which is still pending, and as we have been hearing lately from the ministers that it's not in sight, but something like that, this where we are trying to, 15 countries trying to come together to address structural excess capacity, production, and curb non-market policies, I think it's a very positive step, especially in these times when there is uncertainty in the world.
2: Right.
1: नया मर्चेंट डिस्काउंट ट्रेड एमडीआर फ्रेमवर्क 15 अक्टूबर से लागू होगा। इसके तहत ₹2000 तक के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई भुगतान पर कोई एमडीआर नहीं लगेगा। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने कहा कि व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के लिए इसमें कोई भी मासिक कोटा, भुगतान की सीमा या फिर अतिरिक्त चार्ज नहीं होगा। उपभोक्ता व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को और किसी भी दुकानदार को बिना किसी सीमा या शुल्क के भुगतान कर सकते हैं।
2: Crude oil. Global crude oil prices rose sharply today amid persistent worries about supply from West Asia. Brent crude was trading 4.5% up at $104.72 per barrel. West Texas Intermediate crude was also trading 4.5% higher at $92.25 per barrel at the time of writing this report. Your comments, Siddharth, on crude. Should we look at 100 as the oscillating figure and to and fro from that?
0: Yeah, because except in very small, I think for a small brief period when we had seen a fall in crude oil prices, I think the prices have been hovering around $100. Today, the world over, I think because after around $104 per barrel, I think that is what is shaking the markets all across the globe. So I think this is the new normal. And also another challenge is going to be the supplies. Because of the uncertainty, the attacks happening and supply constraints still persisting in the Strait of Hormuz. So I think, and this is single biggest reason for price rise, inflation. Rising.
2: So it's interesting, you know, when crude oil prices rise, the sentiment goes and, you know, we can see markets responding and people tightening their fiscal and their fiscal and monetary policies. But also, when crude oil prices fall, the result is not so fast to see.
0: Yes, I agree. And obviously because you would have also suffered for a long time with these kind of high prices. If you look at India,
2: it takes time.
0: Yeah, if you look at a country like India, which imports almost 90% of its energy, we have till now, the government of the day has absorbed most of the prices,
2: right.
0: Price rise.
2: Right.
1: और आगे बढ़ते हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की क्लोजिंग रेट के अनुसार 24 कैरेट सोने का मूल्य मामूली गिरावट के साथ 1,47,646 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमत 0.7% लुढ़ककर 2,17,106 रुपए प्रति किलोग्राम पर दर्ज हुई थी। सिद्धार्थ, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: निखिल और गौरा, आप दोनों को भी बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू सिद्धार्थ। एंड बिफोर वी क्लोज अ लुक एट द हेडलाइंस, बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस डिक्लाइन अराउंड 1.5%, सेंसेक्स स्लम्स ओवर 1,000 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स बिलो 22,250, जीएसटी काउंसिल रिमूव्स अरेस्ट पावर्स ऑफ टैक्स ऑफिसर्स, रेजेस थ्रेशोल्ड फॉर प्रोसिक्यूशन फ्रॉम 1 करोड़ टू 5 करोड़ रुपीज, एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस सर्ज ओवर 4%. That's all for today. Namaskar.
1: Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूँ रितिका और कार्यक्रम है गीत मेरे मनमीत।

तो दोस्तों, गीत मेरे मनमीत में आज बस इतना ही। सुरभि आ चुकी हैं स्टूडियो में निशिगंधा लेकर। छोड़े जाती हूँ आप सभी को उन्हीं के साथ। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कर अधिकारियों का गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि परिषद ने जुर्माने और कारावास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया है।
1: The council recommended removing arrest powers under GST.
2: जीएसटी परिषद ने गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने की सिफारिश की है। परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की भी सिफारिश की है। इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम की कर चोरी के मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गई है।
1: From 25,000 to ₹10,000.
0: टैक्स फाइलिंग में गलती या भुगतान करने में विलंब करने पर करदाता को वसूली, ब्याज और आनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्रवाई के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए सुरक्षा ढांचा मजबूत करना बहुत आवश्यक हो गया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
3: आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है, तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है। फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी, ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको फोन पर आए, उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा।
0: श्री मोदी ने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में सबसे तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार संचालकों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर आज विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र एआई और साइबर सुरक्षा, एआई के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में एक समारोह में तपेदिक मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत संयुक्त स्वास्थ्य दल जोश टीमों का शुभारंभ किया। ये भारत में तपेदिक उन्मूलन के प्रयासों में युवाओं के नेतृत्व वाली सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सूखे से प्रभावित 265 तालुकाओं में अनाज की मांग करने वाले हर व्यक्ति को मुफ्त अनाज देने का आदेश दिया है। यह फायदा उन लोगों को भी मिलेगा जो अभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में नहीं आते हैं। इन लोगों को अंत्योदय अन्न योजना या प्राथमिकता वाले परिवार वर्ग में शामिल किया जाएगा, बशर्ते परिवार के सभी सदस्यों ने आधार लिंक करवा लिया हो। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में विस्फोटक नष्ट करने के दौरान सीआरपीएफ के 4 जवान घायल हो गए। ये दुर्घटना भेजी पुलिस स्टेशन इलाके में हुई। 2 जवानों को गंभीर चोट आई है। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और उत्तराखंड में कुछ जगहों पर आज मूसलाधार बारिश का संभावना व्यक्त किया है। विभाग ने बिहार, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तराखंड में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान का भी अनुमान व्यक्त किया है। भारत की पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की इरिको गुंजी को हराया। तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स और थरुण मान्यपल्ली पुरुष सिंगल्स में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz और मैं हूं आपके साथ सुरभि, लेकर प्रोग्राम निशिगंधा। चांद से, फूल से या मेरी जबां से सुनिए, चांद से, फूल से या मेरी जबां से सुनिए, हर तरफ आपका किस्सा है जहां से सुनिए। सबको आता नहीं दुनिया को सताकर जीना, सबको आता नहीं दुनिया को सताकर जीना, जिंदगी क्या है मोहब्बत की जबां से सुनिए। मेरी आवाज ही पर्दा है मेरे चेहरे का, मैं हूं खामोश जहां, मुझको वहां से सुनिए। मेरी आवाज ही पर्दा है मेरे चेहरे का, मैं हूं खामोश जहां, मुझको वहां से सुनिए। जिंदगी क्या है मोहब्बत की जबां से सुनिए।

निशिगंधा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। अगला गीत बहुत ही खूबसूरत सा लेकर आए हैं आपके लिए। बहुत खूब कहा किसी ने कि किसने झलक पर्दे से दिखा दी, आंख ने देखा तो दिल ने दुआ दी। किसने झलक पर्दे से दिखा दी,

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

निशिगंधा आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। कभी खामोश बैठोगे कभी कुछ गुनगुनाओगे, कभी खामोश बैठोगे कभी कुछ गुनगुनाओगे, मैं उतना याद आऊंगा मुझे जितना भुलाओगे। कोई जब पूछ बैठेगा खामोशी का सबब तुमसे, कोई जब पूछ बैठेगा खामोशी का सबब तुमसे, बहुत समझाना चाहोगे मगर समझा ना पाओगे, मैं उतना याद आऊंगा मुझे जितना भुलाओगे। कहीं पर भी रहें हम तुम मोहब्बत फिर मोहब्बत है, कहीं पर भी रहें हम तुम मोहब्बत फिर मोहब्बत है, तुम्हें हम याद आएंगे हमें तुम याद आओगे, तुम्हें हम याद आएंगे हमें तुम याद आओगे। और बहुत खूब कहा है किसी ने, तो चलिए इसी के चलते सुनते हैं ये गीत। फिल्म है पगला कहीं का।

निशिगंधा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। बहुत खूब कहा है किसी ने कि तेरे ही कदमों में मरना भी अपना जीना भी, तेरे ही कदमों में मरना भी अपना जीना भी, कि तेरा प्यार है दरिया भी और सफीना भी। मेरी नजर में सभी आदमी बराबर हैं, मेरे लिए जो है काशी वही मदीना भी। तेरे ही कदमों में मरना भी अपना जीना भी, कि तेरा प्यार है दरिया भी और सफीना भी।

अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर है उधर के हम हैं। तो इसी के साथ निशिगंधा का ये सफर यहीं तक, और हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम की सुहाने में 1:10 पर, और आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कर अधिकारियों का गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि परिषद ने जुर्माना

0: के मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गई है।
1: टैक्स फाइलिंग में गलती या भुगतान करने में विलंब करने पर करदाता को वसूली, ब्याज और आनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्रवाई के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए सुरक्षा ढांचा मजबूत करना बहुत आवश्यक हो गया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
2: आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है, तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है। फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी, ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको फोन पर आए तो उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा है।
1: श्री मोदी ने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में सबसे तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार संचालकों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र एआई और साइबर सुरक्षा, एआई के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सूखे से प्रभावित 265 तालुकाओं में अनाज की मांग करने वाले हर व्यक्ति को मुफ्त अनाज देने का आदेश दिया है। यह फायदा उन लोगों को भी मिलेगा जो अभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में नहीं आते हैं। इन लोगों को अंत्योदय अन्न योजना का प्राथमिकता वाले परिवार वर्ग में शामिल किया जाएगा, बशर्ते परिवार के सभी सदस्यों ने आधार लिंक करवा लिया हो। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में विस्फोटक नष्ट करने के दौरान सीआरपीएफ के 4 जवान घायल हो गए। ये दुर्घटना भेजी पुलिस स्टेशन इलाके में हुई, 2 जवानों को गंभीर चोट आई है। भारत की पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स और धरुण मान्नेपल्ली पुरुष सिंगल्स में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और उत्तराखंड में कुछ जगहों पर मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने बिहार, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और उत्तराखंड में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान का भी अनुमान व्यक्त किया है। इस दौरान आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। प्रोग्राम है गीत सुहाने और सुरभि एक बार फिर आपके साथ। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं मीरा साया फिल्म का ये गीत।

गीत सुहाने आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। बहुत खूब कहा है किसी ने कि जाने किस बात की वो मुझको सजा देता है, जाने किस बात की वो मुझको सजा देता है, जहर देता है ना फिर कोई दवा देता है। गैर मुमकिन है ये छुप जाए मेरी नजरों से, तेरा हंसना तेरे जख्मों का पता देता है, जाने किस बात की वो मुझको सजा देता है, जहर देता है ना फिर कोई दवा देता है।

मैं हूं सुरभि आपके साथ। बहुत खूब लिखा है किसी ने कि मेरे होते भी अगर उनको ना आराम आया, मेरे होते भी अगर उनको ना आराम आया, जिंदगी फिर मेरा जीना मेरे किस काम आया।